मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

हर मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपना सम्मान नहीं कर सकते।

ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने मन, वाणी और कर्म से स्वयं को भगवान को सौंप देना और इस विश्वास के साथ कि भगवान हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे।

ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। वो कभी भी कहीं भी किसी की भी मदद के लिए आ सकते हैं किसी भी रूप में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस का।

भरत ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आवाज़ ए हरिहरन की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहन और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे प्याज की नर्सरी तैयार करने के बारे में। और उसमें एक तो सबसे पहले तो भाइयों ये ज़रूरत है कि भाई जो हम बीज की किस्म ले रहे हैं वो अच्छी बढ़िया और उन्नत होनी चाहिए। और अपने हिसाब से जैसे हमारे खेत में हमने पहले भी यदि लगाया है या कोई पड़ोसी ने लगाया है, किस किस्म का अच्छा हमारे वहाँ पे प्रदर्शन रहा है वो हमने किस्म लेनी है। एक जो हम जगह ले रहे हैं वो जगह सूखी जगह होनी चाहिए, क्योंकि गीली जगह है तो बाद में जाके हमारी जो पौधा है वो पीली पड़ जाएगी। इसलिए जो सूखी ज़मीन है वो होनी चाहिए। उसके बाद हम उसमें जो हम क्यारी बना रहे हैं तो उसके बाद ही उसमें अच्छी क्यारी बनेगी और समतल क्यारी बनेगी। हम उसकी प्यौध की तैयारी कर रहे हैं, उस ज़मीन की हमने जुताई बहुत अच्छे से करनी है और ताकि जो ज़मीन है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। और जो तैयारी है वो हमने इस तरीके से करनी है कि भाई जो हम पट्टे खींचें या जो हम क्यारी बनावें वो ज़्यादा चौड़ाई ना करें, क्योंकि उनके बीच में जो खरपतवार हो जाए फिर वो हाथ से निकालने पड़े हैं। यदि हम उसके अंदर घुस कर करेंगे तो फिर उससे पौध टूट जाए। हम डोली के ऊपर बैठ कर और दोनों साइड से मान लो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट की चौड़ाई करें, इससे ज़्यादा चौड़ाई हम ना करें, लंबाई भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि लंबाई ज़्यादा करने में भी यदि हमने मान लो पट्टे की लंबाई

0: ज़्यादा कर दी तो फिर उसमें पानी है वो ज़्यादा आ जाएगा और कई जगह पर रुक भी सके है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जितना भी हम एरिया ले रहे हैं उस एरिया के हिसाब से एक खुली खुली ही हमारी जो पौधा है वो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार के है कि हम कम जगह पर ज़्यादा बीज डाल दें हैं तो फिर वो बिल्कुल बारीक पौधा रह जाए और वो फिर जो उसका जो बढ़वार है उसकी जो मोटाई है प्याज की वो अच्छे से नहीं बन पाती। इसलिए हमने जो एरिया लेना है वो पूरा लेना है और जहाँ तक हो कोशिश भाइयों इस समय पर विशेषकर जो हम पौध तैयार करेंगे उसमें सिंचाई का प्रबंधन हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि हमारे पास सिंचाई का प्रबंधन कम है तो उस जगह पर हम पौध की बिजाई ना करें। और जहाँ तक हम बात करें भाई ज़मीन को अच्छी भुरभुरी करना है, समतल करना है, छोटी क्यारी बनानी है, बीज को छिड़काव विधि से जो छिटका विधि बोलते हैं, या फिर कुछ भाइयों का एक तजर्बा ये भी है कि दो उंगली से सीधी हम उसमें लाइन खींच दें और फिर उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा बीज डाल कर लें और फिर उसके ऊपर या तो हमें थोड़ी बहुत राख भी डाल सके हैं और या फिर उसके ऊपर अड़की ही हम मिट्टी डाल सके हैं, उससे क्या होगा कि वह जो अपने बीज डाला है वो उसके अंदर छिप जाएगा और जो हमारा बीज है वो ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना चाहिए। और एक बात का भाइयों विशेष ध्यान भी रखना है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बीज का उपचार करके दे हैं और यदि मान लो हम आप खुद बना रहे हैं या किसी हमने लोकल जगह से बीज लिया है तो उसको हमने बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। उसमें चाहे हम कार्बेंडेजिम भी ले सकें हैं, मेनकोजेब भी ले सकें हैं या जो दूसरी फंगस वाली जो दवाइयां हैं वो हम लेकर बीज का उपचार करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में इस तरह की जो समस्या है वो नहीं आ पाऊंगी। बीज का उपचार कर रहे हैं उसको फिर छाया में सुखाना है और छिटका विधि से यदि हम बिजाई कर रहे हैं तो फिर उसमें छिटा धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा जो बीज है वो उस हिसाब से फेंकना है कि भाई तो ज़्यादा एक जगह पर ना डले। और यदि हम उंगली से सीधी निशान लगा के कर रहे हैं तो फिर उसमें भी हमने जो चुटकी से है वो बीज है वो डालना पड़ेगा और उसके ऊपर बिल्कुल अड़की अड़की मिट्टी डालनी है ताकि जो ज़्यादा मिट्टी बीज के ऊपर ना आवे। कई बार क्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं ज़्यादा गहराई में बीज न डाल दे हैं फिर उसका जो जर्मिनेशन हुआ है वो ऊपर नहीं आ पाता और उसमें क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो बीज की जर्मिनेशन पावर है या जमाव जो हमारा होना चाहिए था वो नहीं होया, कम पौध बनी, उसका यही कारण है भी हम उसको ज़्यादा गहराई में भी लगा दें हैं तो वो हमने नहीं लगाना है। जो हम सिंचाई कर रहे हैं देखो शुरू में जब हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जैसे खाद बुर क्या है या राख बुर की है या कोई भी हमने उसको बीज को ढक्या है तो शुरू में हम ये करें कि जो फुहारा है जो नर्सरियों में प्रयोग किया जा है उसको भरकर वो कर दें ताकि बीज है एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा। बाकी फिर हम जो खुली सिंचाई है वो बीच में कर सकते हैं। जो हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो भाई इस जगह पर होनी चाहिए, वे जो पानी निकासी है उसका प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि कई बार के दिक्कत आवे है कि नर्सरी के अंदर पानी खड़ा रह जाए तो फिर वो नर्सरी ख़राब हो जाए, इसलिए निकासी का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। भाई इन कुछ बातों का ध्यान करेंगे तो हम प्याज की जो नर्सरी है बहुत बढ़िया अच्छी तैयार कर सके हैं। भाई हम सबका दिन मंगलमय हो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्र

0: राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जकसांस्कृतिकप्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चनप्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परम् उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्यसचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीयचरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कि इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ

0: तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honour of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora.

युवा संसार कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया शाम 5:45 पर और NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दिन में 12:30।

विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7:15 पर प्रसारित किया जाएगा राजबाला राज का कविता पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर वन विभाग की योजनाएं इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुभाष।

पर्यावरण संरक्षण विषय पर डॉक्टर आर एन यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे। खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर जड़ वाली सब्जी फसलों की देखभाल इस विषय पर जानकारी दी जाएगी।

सुगम संगीत कार्यक्रम सुनना न भूले रात 8:25 पर, फिल्म संगीत प्रातः 9 और शाम 7:30 पर, चित्रपट संगीत दिन में 1:10 पर और एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर।

0: ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत राजबाला राज का कविता पाठ।
1: मैं राजबाला राज हिसार से, तो नारी पर कुछ रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा कि बात यह भी जरा सोचकर देखते, बात यह भी जरा सोचकर देखते, कैसे करती है नारी बसर देखते। इतनी कमज़ोर होती न बेटी कोई, इतनी कमज़ोर होती न बेटी कोई, बेटियों को भी ममता से घर देख। जो दरिंदे हैं वह सी हैं बदमाश हैं, जो दरिंदे हैं वह सी हैं बदमाश हैं, हुक्मरा लेके

की खबर देखते, काम पर राह में हर तरफ जुल्म है, काम पर राह में हर तरफ जुल्म है, सारे कानून हैं बेअसर देखते। सहमी सहमी सी है नारी मिली हर कहीं, सहमी सहमी सी नारी मिली हर कहीं, हम निगाहें उठाकर जिधर देखते। जुल्म बढ़ते न दुनिया में इतने कभी, जुल्म बढ़ते न दुनिया में इतने कभी, बेटों की हरकतें तुम अगर देखते। मैंने कैसी सवारा है उजड़ा जहां, आप आकर कभी तो इधर देखते। जी हाँ, कि जिंदगी हर कदम पे हारी है, जिंदगी हर कदम पे हारी है, तीर सादे खड़ा शिकारी है, वक्त बदला है कह रही है दुनिया, वक्त बदला है कह रही दुनिया, कितनी लाचार अब भी नारी है, कौन तोड़ेगा इतनी जंजीरें, कौन तोड़ेगा इतनी जंजीरें, यह मुसीबत ही सबसे भारी है, उसको कैसे सनम भुलाऊंगी मेरे सर पर जो जिम्मेदारी है। औरतें सर उठाकर चल पाएं, औरतें सर उठा के चल पाएं, जंग मेरी अभी ये जारी है। तो अगली रचना देखिएगा कि क्या है नारी। इस जग का आधार है नारी, इस जग का आधार है नारी, बनकर बेटी करे, बनकर बेटी सेवा करे माता पिता की, माँ की भूमिका वह जब निभाती, माँ की भूमिका जब वह निभाती, लाड प्यार से ममता बरसाती, अपनों के सुख की खातिर, अपनों के सुख की खातिर, न जाने झेलती कितनी लाचारी, इस जग का आधार है नारी। अबला नाम से जब पुकारा जाता, अबला नाम से जब पुकारा जाता, क्यों नहीं सबल बनाने का ख्याल आता, देवी रूप धर औरत ने पापों को मिटाया है, दुख दर्द के कांटों को अपनों की राह से हटाया है, निर्बल ने कहना तुम कभी नारी को, निर्बल ने कहना तुम कभी नारी को, कभी लक्ष्मी तो कभी दुर्गा बन हरी पीड़ा सारी, इस जग का आधार है नारी। पत्नी बन सृष्टि को अस्तित्व प्रदान करती, संभाले विषम हालात में नहीं किसी से डरती, देती अपनी कोख से संतान को जन्म, देती अपनी कोख से संतान को जन्म, धरती आसमारो देते जब खुद कोख में मरती, त्याग ममता की मूर्ति कहती जाती, त्याग ममता की मूर्ति कही जाती, देवता भी बसते वहाँ जहाँ पूजी जाती नारी, इस जग का आधार है नारी। बिना नारी के सोना है यह संसार, बिना नारी के सोना है यह संसार, इसके बिना नहीं इंसान, मन में करो विचार। नारी ने सबको सम्मान दिया, नारी ने सबको सम्मान दिया, तुम भी इसका सम्मान करो, किया अगर कभी अपमान इसका, अपने ही हाथों कमाओगे पाप भारी, इस जग का आधार है नारी। तो इस रचना में रानी लक्ष्मीबाई का अवतार है नारी। तो सुनिएगा, इलम है सब खुद पे भी एतबार है, हम में हिम्मत हाथ में तलवार है, अब तलक नारी छली जाती रही, अब तलक नारी छली जाती रही, जुल्म से अब लड़ने को तैयार है, आँख दुश्मन को दिखाती अब वो, आँख दुश्मन को दिखाती अब वो, कौन कह सकता है अब लाचार है नारी। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, यह एक बात तुम, जीने का हर नारी को अधिकार है, अब बनी रणचंडी हर एक नारी यहाँ, अब बनी रणचंडी हर एक नारी यहाँ, अब हर एक दुश्मन पे उसका वार है, वीरता साहस भरी हम नारियाँ, वीरता साहस भरी हम नारियाँ, हम में लक्ष्मीबाई का अवतार है। बेबस, बेबस हूँ वक्त के आगे, नारी क्या कहती है कि बेबस हूँ वक्त के आगे, बुनती हूँ मजबूरी के धागे, जो हौसला था मुझ में खो गया कहीं, टकराकर हालातों से टूट चुकी हूँ, पर सहेजती हूँ आत्मविश्वास के कण, और पूछती हूँ खुद से क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे कर पाऊंगी सामना मुश्किलों का, उठाना ही होगा मुझे, लड़ना ही होगा समाज से, अपनों से, अपने हक के लिए, बेबस नहीं हूँ मैं, हाँ अब बेबस नहीं हूँ मैं। तो तरन्नुम में एक रचना और सुनेगा कि आज मुझको इस जहाँ में एक ठिकाना मिल गया,
आज मुझको इस जहाँ में एक ठिकाना मिल गया, मिल गए अपने सभी गुलशन।

खिल गया। आज मुझको इस जहाँ में एक ठिकाना मिल गया। मैं न पालूं बैर दिल में अब किसी भी बात का, चाहती हूँ मैं न बदला अब किसी आघात का, चाहती हूँ मैं न बदला अब किसी

रही जगती का उद्धार करने, बन दी जग में बही। सब सवालों का यहाँ पर एक मैं उत्तर बनी। ढूंढता था दिल जिसे अब पा वही मंजिल गया। आज मुझको

0: सभी गुलशन सुहाना खिल गया। एक वहां पर और सुनिएगा रचना कि एक रात लिखने बैठी जीवन का वृतांत सारा, कलम थी हाथ में अजब था वह नज़ारा। बचपन की सारी यादें संजोने को हो गई मैं तैयार, फिर चली कलम संजोया बचपन, पिता का दुलार भाई का स्नेह बहन का प्यार। जब देने लगी माँ की ममता को शब्द, जब देने लगी माँ की ममता को शब्द, रुक गई अचानक कलम, आंसू बहने लगे नैनों से, दर्द ब्याह होने लगा बहनों से। शायद माँ की ममता को शब्दों में न पिरोया जाएगा, इसलिए रुक गई कलम। फिर उठ कर चली दो चार कदम, फिर उठ कर चली दो चार कदम, जाकर लिपट गई माँ से हुआ एहसास प्यारा। जाकर लिपट गई माँ से हुआ एहसास प्यारा, सुखद माँ की ममता में ही है, सुखद माँ की ममता में ही है जीवन का वृतांत सारा, जीवन का वृतांत सारा। धन्यवाद।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राजबाला राज का कविता पाठ। ये कार्यक्रम सुनवाया गया मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। मंदिरों में बटे अब यही प्रसाद, एक पौधा

और थोड़ी सी खाद। हर मस्जिद से यही अजान, दरख्त लगाए हर इंसान। अब गूंजे गुरुद्वारों में वाणी, दे हर बंदा पौधों को पानी। सभी चर्च दे अब ये शिक्षा, वृक्षारोपण यीशु की इच्छा। नित हो रही हैं सांसें कम, आओ पेड़ लगाएं हम।

श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह के रूप में। और ये जो सप्ताह है ये जुलाई में ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये समय भारत में मानसून की शुरुआत का समय होता है। बारिश का मौसम होने के कारण इस दौरान लगाए गए पौधों को पर्याप्त प्राकृतिक पानी मिलता है, जिससे उनके पनपने और जीवित रहने की दर अन्य महीनों की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाती है। और सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री के एम मुंशी के द्वारा की गई थी। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। वन महोत्सव का शाब्दिक अर्थ पेड़ों का उत्सव यानी कि वन का पर्व होता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमने आपको बताया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए सभी को प्रेरित करना है। इस उत्सव के दौरान देश भर में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। श्रोताओं, वन महोत्सव केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान है। और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि केवल एक दिन या एक सप्ताह तक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें साल के प्रत्येक दिन जब भी हमें मौका मिले, जहां भी हमें मौका मिले, हमें पौधारोपण के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए एक दिन या तिथि निश्चित नहीं होती बल्कि अच्छे काम को हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और जब हम अपने समय मिलते ही पौधारोपण करते हैं तभी हम अपनी धरती को हरा भरा बनाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, मानसून का मौसम अपने साथ भले ही राहत भरी बारिश लाता है, लेकिन इस मौसम में उमस और चिपचिपी गर्मी भी देखने को मिलती है। इस तरह की मौसम की जो स्थिति है उसमें हमारा शरीर बहुत जल्दी थक जाता है और कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। उमस वाली गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हवा में नमी ज़्यादा होने के कारण वह सूख नहीं पाता, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस स्थिति में डिहाइड्रेशन, फंगस इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो आम देखने को मिलती हैं। इसलिए इस मौसम में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। इस मौसम में अपनी दिनचर्या और खान पान में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि उमस वाली गर्मी में पसीना ज़्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए दिन भर खूब पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या ताज़े फलों का जूस भी पीते रहें। ये पेय पदार्थ न केवल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करते हैं। इस मौसम में भारी और मसालेदार भोजन खाने से बचें। मसालेदार भोजन जो है वो पसीना और पेट दोनों की गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाएं, जैसे कि सलाद, दही, खिचड़ी, मौसमी सब्जियाँ। ये पेट को स्वस्थ रखने और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर रखने में सहायता करते हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ज़्यादा देर पहले से कटे हुए जो भी फल सब्जियां हैं, सलाद हैं, उनका सेवन भी ना करें, क्योंकि जब ये ज़्यादा देर पहले कटे होते हैं तो इनमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान करते हैं। और श्रोताओं, देखिए, सफाई का ध्यान तो हमें हमेशा रखना चाहिए, और उमस के कारण शरीर पर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। दिन में कम से कम 2 बार स्नान जरूर करें और ढीले सूती कपड़े पहनें, ताकि पसीना सूख सके और त्वचा को सांस लेने का मौका मिले। और साथ ही साथ जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो गीले कपड़े पहनने से परहेज करें। अपने घर को भी हवादार रखें और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान

हम अक्सर देखते हैं। तो ऐसे में जब बारिश के बाद धूप निकले तो घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल दें, पर्याप्त धूप को हवा को अपने घर के अंदर आने दें और अलमारियों में रखे हुए कपड़े या जो बेड में कपड़े होते हैं उन्हें भी धूप समय समय पर लगवाते रहें। तो इससे भी जो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया पनपने की जो समस्या है उससे आप बच सकते हैं।

श्रोताओं, बात स्वास्थ्य की हो तो स्वास्थ्य के ही एक बात और भी आती है इसके अंतर्गत, वो है हमारी आंखों की। तो बारिश के मौसम में नमी और उमस के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेज़ी से पनपते हैं, जिससे आई कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों का आना या आई फ्लू की समस्या हो जाती है। ये जो बीमारी है ये अक्सर बारिश के मौसम में ही होती है। इसके मुख्य लक्षणों में आंखों का लाल होना, तेज़ खुजली, पानी बहना, आंखों से चुभन और सुबह पलकों का चिपकना शामिल है। आंखों में खुजली होने पर आप उन्हें रगड़े नहीं, और क्योंकि इससे संक्रमण जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोना चाहिए ऐसे में, या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, उस व्यक्ति से अपना तौलिया, रुमाल, तकिया या चश्मा बिल्कुल भी शेयर ना करें। अक्सर माना जाता है कि ये लोगों में वहम है कि जिस व्यक्ति की आंखें दुखनी आती हैं, यदि हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमारी भी आंखें दुखनी आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बल्कि संक्रमण के कारण फैलने वाला रोग है। इस दौरान आँखों का मेकअप करने से बचें, क्योंकि यह बैक्टीरिया के पनपने का कारण बन सकता है। जब भी आप बाहर निकलें तो धूप का चश्मा ज़रूर पहनें, और आँखों को धूल, बारिश के पानी और हवा में मौजूद एलर्जी से बचा सकें आप। और अगर आप घर पर हैं तो बंद आँखों पर साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख सकते हैं, इससे सूजन और जलन में राहत मिलेगी। आमतौर पर यह संक्रमण उचित देखभाल के साथ ही हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, क्योंकि ये भले ही ये कोई घातक बीमारी नहीं है, लेकिन आँखों में दर्द और जलन जैसी समस्या इस बीमारी में होती है। तो अगर हम सही देखभाल करते हैं, सही उपचार करते हैं, तो हफ्ते भर में इस बीमारी से हमें निजात मिल जाती है। यदि समस्या ज़्यादा हो, धुंधलापन महसूस हो, या फिर पीला चिपचिपा पदार्थ जो है आपकी आंखों से निकले, तो खुद से कोई भी पुरानी आई ड्रॉप ना डालें। इसके लिए आप तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी।

0: भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स

0: मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब

0: शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture,

0: तक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

इसके साथ ही हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे जय सिंह कलायती। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए हुए गीत के साथ। आनंद बख्शी के हैं बोल और संगीत शिव हरी का। चांदनी फिल्म का ये गीत है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अब जो गीत आप सुनेंगे उसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत आरडी बर्मन का। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये है अगर तुम ना होते, इस फिल्म का गीत।

एक दूजे के लिए। लीजिए सुनिए इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। आनंद बख्शी के हैं बोल संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का स्वरबद्ध किया हुआ शोर फिल्म का गीत। संतोष आनंद ने इसे लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाड़ेकर और लता, आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है और फिल्म का नाम है दिल।

कार्यक्रम में अब सुनिए मजरूह का लिखा हुआ गीत संगीत आनंद मिलिंद का। आवाज है उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की। फिल्म का नाम है तुम मेरे हो।

0: तुम मेरे हो इस फिल्म के गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 10:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने पीओजेके के निवासियों और

0: कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto are currently holding the bilateral meeting at Presidential Palace in Jakarta, Indonesia. Earlier, Prime Minister Modi received a grand ceremonial welcome at the Presidential Palace in Jakarta, marking the beginning of his official engagements. Indonesian President Subianto and Prime Minister Modi introduced the members of their respective delegations to each other at the Presidential Palace, underscoring the spirit of friendship and cooperation between the two nations. Prime Minister Modi also signed guest book at Istana Merdeka, the Presidential Palace. As Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the iconic Prambanan Temple tomorrow, the UNESCO World Heritage Site continues to attract tourists from across the globe. Renowned for its magnificent 9th century Hindu architecture, the temple stands as one of Indonesia's most celebrated cultural landmarks. Dedicated to Shiva, Vishnu and Brahma, Prambanan Temple reflects the centuries-old cultural and civilizational links between India and Indonesia. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said, "The ministry, established by Prime Minister Narendra Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive." The 6th batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Akashwani Jammu correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the holy cave shrine in Kashmir. The smooth movement of yatris, a total of 363 vehicles were deployed. The yatra convoy moved under elaborate security cover with escort arrangements by police, CRPF and other security agencies to ensure the safe passage of pilgrims on both routes. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grant and final response on 9th of July if their conditions remain unfulfilled.

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यू जोन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:17 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
3: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
3: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
3: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
3: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
3: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
3: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
3: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
3: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
3: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
3: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल

0: जी, हमने अक्सर मातृवृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल।
0: मातृवृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces
1: the... Papa, Kaira ka ye hawaii adda kitna shandar hai.
2: Haan beta.
1: Dadaji to kahin dikhai nahi de rahe.
2: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ, आओ चलो।

0: बता दे, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: डियर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
1: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
2: चलिए पापा।
0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
2: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
2: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
1: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
2: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
1: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
1: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेखादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वह क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली?
3: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और फिर 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के रूप में मान्यता देने की कवायद शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक विकास के विजन तथा विकसित हरियाणा 2047 के लक्ष्य को बल देने के लिए एक सशक्त अनुसंधान तंत्र विकसित करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में इस आशय के एक प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को पीएचडी शोध कार्यक्रम संचालित करने तथा नीति अनुसंधान, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल गवर्नेंस एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक बहुविषयक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इस पहल से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक अनुसंधान को संस्थागत स्वरूप मिलेगा तथा सरकार में साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा ने साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए साइबर ठगी के मामलों में 31% धन वापसी की सुनिश्चित की है। यह राष्ट्रीय औसत 3.85% से 8 गुना अधिक है। ये जानकारी कल चंडीगढ़ में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई प्रगति समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में 14,000 से अधिक अवैध ऑनलाइन सामग्री हटाई गई और 3,947 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पिछले 1.5 साल में साइबर हॉटस्पॉट नूह से 927 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच 9,100 पुलिसकर्मियों को साइबर जांच का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंकों के साथ उप विजेता का स्थान हासिल किया, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। चैंपियनशिप में महिला वर्ग में प्रवीण ने 50 किलोग्राम, मुस्कान ने 53 किलोग्राम और काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मान्या राजपूत ने 57 किलोग्राम, सविता ने 62 किलोग्राम और मनीषा ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इसी तरह काजल ने 55 किलोग्राम, कोमल 59 किलोग्राम और मानसी लाठर ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष फ्रीस्टाइल में सुमित कुमार लक्ष्मण ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुष्प ने 61 किलोग्राम, सौरभ यादव ने 79 किलोग्राम और रौनक ने 125 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किए और रोहित ने 57 किलोग्राम भार वर्ग, आदर्श युवराज पाटिल ने 74 किलोग्राम और लकी ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके अतिरिक्त

0: ग्रीको रोमन वर्ग में अक्षय राणा ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में रजत ने और नीरज पटेल अनुरज व धीरज कुमार मलिक ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल करनाल में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचार के प्रस्तुत कार्यसूची के तहत करीब 80 योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गाने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाया हुआ बड़े दिल वाले फिल्म का गीत आपने सुना। आर डी बर्मन का संगीत था, गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं आक्रमण फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की ही आवाज़ें आप सुनेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का है गीत।

आक्रमण फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए आवाज़ों में गाया हुआ आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। रोहतक के मौसम की अगर बात करें तो स्टूडियो के बाहर मौसम काफ़ी सुहावना है, तो श्रोताओं तक गीत के माध्यम से हमने रोहतक का मौसम भेजा था। बहरहाल अगला गीत आपके लिए मौसम फिल्म से भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे। गुलजार के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ये था मनोकामना फिल्म का गीत। आरती मुखर्जी की आवाज़ थी, इंदिवर के बोल थे, संगीत था बप्पी लाहिड़ी का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये आपने स्वाति फिल्म का गीत सुना। मनहर उदास, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं। पहेली फिल्म से सुरेश वाडकर और हेमलता ने इस गीत को गाया है। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में पहेली फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है लावा फिल्म से। आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ें आप सुनेंगे। संगीत आर डी बर्मन का है।

ये था लावा फिल्म का गीत। आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ें थीं। आर डी बर्मन का संगीत था। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं, ऊंचे लोग फिल्म से। सलमा आगा, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। इसे लिखा है अनजान ने, संगीत पद किया है आर डी बर्मन ने।

यह था कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दो बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।

0: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को

0: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों ये बरसात का मौसम चल रहा है, यूं कह सकते हैं कि वह मानसून आए गई और इसमें जो खरीफ के अपने काम हैं उसमें भाई वे कोई पहले से तैयारी भी कर रहे हैं और ये भी उसमें लाग भी रहे हैं। और बात भी सही है भाइयों कि हमने समय रहते अगर यह ध्यान दे लिया कि भाई हाँ अब हमने ये फसल लगानी है, उसके लिए हमने बीज लेना है और फिर उसकी पहले यह देखना कि किस्में कौन कौन सी लेनी और ध्यान ये भी रखें। कई जागरूक किसान तो भाई तो ये देखें कि मेरा ये खेत है मेरा ऊंचा है या नीचा है या किस तरह इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहर सके तो वो फिर अपने उसमें धान लगाने की कोशिश करें। और जो मान लिया ऊंचा है उसमें अपना दूसरी फसलें जैसे भाई एक तो दलहनी फसलें अरहर वगैरह लगा लें या कपास नकदी फसल कपास गन्ना लगा लें भाई वो कर लें यानी दूसरी फसलें उसमें लगा लेते हैं। तो वो तो हमने भाई खुद ये देख कर चलना है कि भाई हाँ हमें इस खेत में कितना पानी है क्योंकि भाई अब आगे देखा है जब मान लिया कहीं ऊंची जगह पर धान लगा लेते हैं भाई तो उसमें पानी तो ठहरने का नहीं ठहरेगा तो समस्या हमारे लिए क्या होगी, ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा और फिर तेल का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और इसमें राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान, हम ज़्यादा तेल का वो करेंगे ना, नीचे जो ज़मीन का पानी है उसका भी नुकसान करना है, ज़्यादा ज़्यादा उसका दोहन करना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ ये देखें कि हाँ भाई यहीं पर पानी रह कर झील की जगह है वहीं अपने दाना की रोपाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा भाई, ना तो फिर वो ये बता दिया कि वह खर्चा ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए आमदनी नहीं हो। फिर किसान भाइयों का ये एक शिकायत रहे है कि आजकल किसान भाइयों की आमदनी कम हो रही है, कारण उसका यही है कि किसान भाई के सिर्फ उसकी मेहनत बचती है, मेहनत अब वो करता नहीं। आजकल देखा जो दूसरी फसलें उनमें भी निकल पता मेहनत हो क्योंकि अब एकल परिवार हो गए और ज़्यादातर उसमें शिक्षा पर ध्यान हो गया कि बस ज़्यादा पढ़ाई उसमें हो गया तो किसान भाई बहुत कम उसमें अपने हाथ से काम कर रहे हैं, या तो मशीनीकरण हो रहा है या फिर जो ये बाहरी मजदूर हैं उनसे काम करवा जा रहे हैं। तो उसमें जो क्योंकि पहले भी बचत तो यही हुआ है, जो उसकी मेहनत है किसान भाई की मेहनत बचत करे यार, अब वो बात रही नहीं, किसान भाई मेहनत कर नहीं पाता तो इसलिए उसके फिर वो बचत भी नहीं। और जब ज़्यादा खर्चा करेगा, ज़्यादा खर्चा करना है तो फिर उसके वही बात हो जाएगी, फिर आमदनी में तो निकलेगा सीधा। तो इसलिए ये देखना है अपना खेत का चुनाव करना कि हम ये कर लिया हैं धान लगाना है या इसमें अरहर लगानी है या गन्ना लगाना है या नकदी फसलों में हमने कपास लगानी है या और जो दूसरी फसलें हैं गवार है ये भी कर सके या चारे वाली फसलें भी हैं अपने करते, आजकल चारे की भी खूब अरे चारे तौर पर खूब बिके हैं। तो चाहे तो उसमें ये ध्यान जरूर रखना है कि किसान भाई ने अपनी फसल तो उगानी उगानी है, साथ में अपनी बचत की तरफ भी ध्यान देना। कई भाई तो अब ये देखा गया इसमें कि कोई बागवानी की तरफ जा रहा है, कोई फूलों की खेती करने लग रहा है, कोई भाई अपना मुर्गी पालन कर रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है। तो उसमें सिर्फ यही है जो तो वो कम होगी अपनी और आमदनी उसमें बढ़ानी है क्योंकि पहले जो कृषि पर ही था सारा का सारा जो बोझ था वो सारा कृषि पर था, अब उसमें से थोड़ा है ये हुआ है कि वह जो मूल खेती करने वाले हैं किसान भाई उन्होंने अब ये देखा कि वे अपनी नौकरियों की तरफ जाने लगे तो खेती करते हैं, आजकल पढ़े लिखे वैसे हो गए खेती में बहुत कम ध्यान है उसमें। और हाँ जो भाई करें हैं उसमें वो देखा गया कि वो वैज्ञानिक तरीके से करें और बहुत बढ़िया उसमें वो एक मैनेजमेंट उसमें अच्छी करके ना और अच्छी आमदनी उसमें दे रहे हैं। तो यही बात है कि मैं अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि उसमें अपना एक सूझबूझ से वैज्ञानिक तरीके से नए नए बीज लिया करने, खादों का कम से कम प्रयोग करके, रासायनिक खादों का और दवाइयों का देसी खादों ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, हरी खाद का ई वे हरी खाद का जिक्र आता तो भाई कई भाई अपने उन्हें लगा रखे हो हरी खाद डेचा है या जन उसमें वो था कि भाई सनी थी या मूँग थी, ये बैसाखी मूँग का तो बहुत बढ़िया है उसमें अपने मूँग उन्होंने तोड़ भी लिए हैं और एक तो दलहनी फसल है दाल भी होगी और साथ में जो उसमें हरी खाद का काम है वो भी कर दिया। तो ये सबसे बढ़िया है भाई इस तरह

0: हम खुद कल्याण ध्यान दे लें तो बहुत ही बढ़िया रह जाए। हाँ, उसमें साथ में किसान भाई का एक ये भी रहे, और जो जागरूक किसान भाई है कि जो अपनी ये फसल है उनका तो रखें रखें ध्यान, आगे वाली फसलों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब ये बात करें बस जड़ वाली फसलों की, जड़ वाली फसलें हैं जिसमें आगे वह गाजर मूली शलजम है, ये हैं, ये सारी ही हैं। तो इनमें भी वैसे तो देखो ये है सब्जी की फसलें, लेकिन कई बार ये देखा जाए किसान भाई पहले से अपना बीज का इंतजाम कर ले और उसकी ये देख ले कि वह किसमें है, उसने ध्यान में रख ले, और जब जाकर उसका पहले से क्योंकि अपने खेत की तैयारी कर ले और साथ में उसकी जब बिजाई कर रहे हैं तो उसने बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। और भाई सब्जी फसलों का तो आपको पता ही है, या तो अगेती में ज़्यादा आमदनी होती है या फिर पछेती में, और जो मध्यम है उसमें मध्यम में इतना भाव नहीं मिल पाता किसान भाई। तो वैसे तो इसमें इस मौसम में तो ये देखा जाए मूली की एक ही किस्म है, पूसा चेत की है, यह किस्म है अच्छा तापमान सहन कर लिया है, बहुत बढ़िया यह पैदावार देने वाली है, ये गर्मी के लिए भी और वर्षा ऋतु के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये इसकी जड़ें अच्छी लंबी हों और 40-45 दिन में ये है हमने फसल देनी शुरू कर दी है, और जड़ इसकी मध्यम है, लंबी है, मोटी है, सफ़ेद है, नरम है और थोड़ी तीखी भी है, क्योंकि मूली की तो एक बात यह भी हो रहा है भाइयों, जो तीखी भी होनी चाहिए जरूर। और जो इसकी औसतन पैदावार हमने 60 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में मिल गया है, जो भाइयाँ इस टाइम पर हमारे गर्मी में मिली है जिसने, या जो अब बरसात के मौसम में लेना चाहो भाई, तो उसके लिए मूली की है बस एक ही किस्म है, और वो किस्म है पूसा चेत की, इन्हें लेकर अपना बिजाई कर सके। और बात इसमें और दूसरे भी करें, जैसे बताया था पहले भाई मूली है, शलगम है, गाजर है, इनकी बात करें कि तो कि भाई इनके बीजों का इंतजाम आपने पहले से ही कर लेना है, और ये क्योंकि अगस्त सितंबर में इनकी बिजाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही वह आपने रागनी सुनवा दिया, गायक कलाकार रहेंगे सुनील दुजानिया और उनके साथी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

भैयान रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया और उनके साथी रागनी। इन नई गायोड एक और भी सुनवाएंगे आपने, लेकिन जिक्र कर रहे थे सब्जी फसलों की काश्त पे, जड़ वाली सब्जी फसल। तो उसमें भैया एक चीज़ तो ये मूली की बता दिया आपने कि भैया एक किस्म है पूसा चेत की, जो कि गर्मी के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी इसको लिया जा सके। और जो दूसरी फसलें हैं जिस तरह गाजर की है या मूली की दूसरी किस्में हैं, शलगम है, इनके लिए हमने जो समय रहेगा जो बिजाई का वो आगे चाल के ना होगा। जैसे देसी गाजर की बिजाई का बढ़िया समय वो मध्य सितंबर है, मूली और शलगम का है जो देसी का है वो अगस्त से सितंबर का है, और जो यूरोपियन किस्में हैं उनकी बिजाई अक्टूबर नवंबर में आगे होगी। तो आपने जो देसी किस्में लगानी जिस तरह उसके लिए अपनी किस्में लेनी और फिर उन्हें अपना पहले सुरक्षित करके अच्छा बीज का उपचार कर फिर उसकी बिजाई करी जा सके। किस्में बता दें आपने जिस तरह गाजर में है कि पूसा केसर है, बहुत बढ़िया किस्म है, या गेती है देसी किस्म है, और इस किस्म के जो पत्तों का जो समूह वो छोटा हुआ है, केसरिया रंग की जड़ है और बीज का भाग भी इसका अच्छा लाली वाला हुआ है, और इसके औसतन पैदावार 100 क्विंटल लगभग एक एकड़ में हमने दे दिए। किस्म है पूसा केसर गाजर की किस्म है, इशार गैरी का किस्म है, यह भी बहुत बढ़िया किस्म है, लंबी है, संतरी है और इसकी औसतन पैदावार 110 क्विंटल लगभग एक एकड़ में हमने मिल जाए है। नेंटिस है या यूरोपियन किस्म है जो कि आगे अक्टूबर नवंबर में जारी करी जाएगी, इसकी जड़ें बेलनाकार हैं, मध्य में लंबी पूछनुमा है और इसकी संतरे रंग की हूँ और औसतन पैदावार 100 क्विंटल एक एकड़ में हमने मिल जाए है। ये तो थी गादरी किस्म है पूसा केसर, इशार गैरिक और नेंटिस। मूली में पूसा चैत की बताई दी जो कि भाई वे गर्मी में और बरसात के मौसम में इसकी बिजाई कर सका हमें। और जो दूसरी किस्म है इसमें पंजाब सफ़ेद और इशार स्वेती है या इशार सिलेक्शन नंबर एक का नाम तो जाना, जापानीज वाइट है और वाइट आइसिकल है, ये तो है इसकी जो मूली है उसकी किस्म है। शलगम में वाइट चार है, पर्पल टॉप वाइट ग्लोब है, ये इसकी शलगम की है। और जिस तरह समय बताया था इसमें भाइयों जो देसी गाजर का तो है मध्य सितंबर का, और मूली शलगम का जो देसी किस्म है उनका सितंबर से अक्टूबर तक का या अगस्त से सितंबर तक का बीज का। और इसमें जो बीज की बात है भाई, गाजर में तो 4 से 5 किलो बीज लगेगा, मूली में 3 किलो बीज लगेगा और शलगम में 2 किलो बीज लगेगा। इस तरह अपने लेकिन पूरी तैयारी करके बैठाएंगे तो आगे जाकर जो इनकी पैदावार है हम उसमें खूब भरपूर आमदनी ले लेंगे। और जिस तरह बताया था भाई जो अगेती सब्जी फसलों में खास कर चाहे तो हम अगेती लें चाहे पछेती लें उसमें ज़्यादा फायदा हो, जो मध्यम की समय की है उसमें इतनी हमें आमदनी नहीं हो पाती, तो उसका ये कारण। इसलिए पहले आपको भाइयों को सचेत कर दिया जाए कि भाई जो गाजर मूली शलगम जो ये जड़ वाली हैं फसलें हैं इनकी आप अगेती बिजाई कर लेंगे तो, लेकिन जो जिस तरह समय बताया है कि वह जो देसी किस्मों का मूली का इसका शलगम का अगस्त से सितंबर का, यानी अपनी पहले से ही बीज ब्याज लाकर तैयारी कर ले हैं, और मूली की जो पूसा चेत की बताई थी उसकी बिजाई हम अब भी कर सका हैं बरसात के मौसम में, गर्मी में भी और बरसात के मौसम में भी। ये अपना बीज का बता रहा, गाजर में इसमें 4 से 5 किलो की बीज लगेगा और मूली का हमने इसमें 3 किलो बीज लेना है और शलगम का 2 किलो बीज लगेगा एक एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह हमने जड़ वाली सब्जी फसलों के

तो भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे जड़ वाली सब्जी फसलों की देखभाल। तो इसमें भाई जो इस तरह बता रहा कि अपने बीज लेकर और उसका उपचार कर जब उसका बिजाई कर दे समय आने के बाद, और भाई घड़ी का ना देख लो कार्यक्रम समय समाप्त, सारे बाण भाइया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मिडन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30:12 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

युवा संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए श्रोताओं, जहाँ पर भी हम रहते हैं, जहाँ हमारा आसपास का वातावरण होता है ना, वो आप पर बहुत प्रभाव डालता है। हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर, क्योंकि एक ऐसा वातावरण जहाँ हम सांस ले रहे हैं वो एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज पर्यावरण सुरक्षा पर। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। ये सब हम जानते ही हैं क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। देखिए, ईश्वर ने हमें इतने सारे साधन दिए हैं, ऐसी प्रकृति की चीज़ें बनाई हैं जिनका हम कहीं मुकाबला नहीं कर सकते, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा कभी इंसान बना ही नहीं सकता, लेकिन उन चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है जिससे हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है और इसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कि परि और आवरण, यानी कि चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं। हमारे चारों ओर फैले आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। जब वही सही नहीं होगा तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? श्रोताओं, अगर हम देखें तो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पहाड़, झरने, नदियाँ आदि सभी आते हैं इसके अंतर्गत। जहाँ हम नहीं इस बारे में सोचे तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे लिए बनती जा रही है। ना तो हम इस चीज़ में सोच रहे हैं और ना ही हम इस पर काम करें तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। पूरे सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, और हम समय रहते पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करके सुरक्षित करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और ये जिम्मेवारी सबसे शुरुआती जो है वो हमसे है, यानी हम हर एक व्यक्ति इसका प्रयास करें। इस सदी में लोग विकास के नाम पर बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के बिना इस ग्रह पर लंबे समय तक क्या आपको लगता है कि हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर सोच विचार किया जाए तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा कठोर कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, इसके सब की रोकथाम जो है ना, इस प्रदूषण को हम इससे निजात पा सकते हैं, इसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। जितना महत्व पर्यावरण में मनुष्यों का है, उतना ही जो हमारे जीव जंतु हैं उनका भी है। अकेले मानव के अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि जो ये पेड़ पौधे हैं उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है, तभी हम सांस ले सकते हैं। हमारी जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन, हमें इन सब से ही तो मिलती है। तो पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, संगठनों, सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारा काम है, और इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना है। जहाँ संभव हो, क्षति हो, उन उपायों पर ध्यान देना चाहिए हमें, और ये सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि सभी को मिलकर इसके ऊपर एकजुट कार्य करना पड़ेगा। वैज्ञानिक गतिविधियों को अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जो औद्योगिकीकरण है उसके लिए शहरीकरण के नाम पर पेड़ों की जो कटाई हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है कि पर्यावरण बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आपको नहीं लगता श्रोताओं कि इसके बारे में कुछ सोच विचार किया जाना चाहिए? और ये बात आज से ही नहीं बल्कि सदियों से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपने काम पूरे करते हैं और बस, हमारा उतना ही कर्तव्य है कि हमारा काम पूरा हो गया, बाकी इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, पड़ रहा है और पड़ता जा रहा है, इसका हमें कोई भी, हम अपने दिमाग को नहीं सोचते हैं। पर्यावरण सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए 5 जून 1972 में पहली बार स्टॉकहोम स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया।
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भारत ने पहले महत्वपूर्ण कदम उठाया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वातावरण में जो घुले घातक रसायन हैं उनकी अधिकता को कम करना और पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रदूषण से बचाना। इसमें 26 धाराएं हैं। इन धाराओं को 4 अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है और इन अधिनियमों का निर्माण पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नियम बनाना बहुत आसान है लेकिन नियमों को पालन करना श्रोताओं बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस पर ध्यान देना अभी से शुरुआत करेंगे, हर दिन करेंगे, हर पल करेंगे, तो पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। चलिए, बातें तो यूं ही चलती रहेंगी और ये विषय भी यूं ही चलते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वरों में अभी आपने ये गीत सुना, और फिल्म का नाम था कुर्बान। इसके पो लिखे थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलन का। कुछ ही पल पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण की। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी के लिए इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं और उसके बिना हमारा जीवन जो है ना वो नहीं चल सकता। श्रोताओं, वो है जल, बिजली, ईंधन, है ना। अगर एक बार भी लाइट चली जाती है या हमारे घर में कोई भी पानी की अव्यवस्था हो जाती है, हमें पानी नहीं मिलता, तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। हमारे खुद के शरीर में पानी की इतनी आवश्यकता है, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। तो ये हमारी ही नहीं, प्रकृति की भी एक ज़रूरत है, चाहे वो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको पानी चाहिए। जल, जल और बिजली बचाना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आने वाले समय में कहते हैं कि जल जो है उसकी बहुत कमी होने वाली है। जल और बिजली बचाना यानी पृथ्वी की सहायता करने और अपव्यय को कम करने के लिए इन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जल और बिजली बचाने पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम ये लगे कि हम इसको, इसकी बचत कर सकते हैं, इसको हम जहाँ भी चाहें इसको हम बचा सकते हैं, वहाँ हम कोशिश करें। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहली बात ही आती है कि हम इनको बचाएं कैसे। बचाने के लिए आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप घर में जो भी जल यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपका काम भी हो जाए और पानी की जो उपयोग है उसका वो भी कम हो। पानी सबसे कीमती चीज़ है। बिजली के बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम अंधेरे में नहीं रह सकते हैं। बिजली के बिना भी हमारा सारा काम रुक जाता है। पानी के बिना जीवन ही नहीं है। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों, वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए और पनपने के लिए पानी की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग एक नल से पानी छोड़ने या ताज़ा पानी के तेज़ी से घटते स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं बिजली आने पर जो स्थिति होती है उसको भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने घरों में लाइटिंग से लेकर सारी जो मशीनरी है उनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर भी बिजली चल रही होती है। ये छोटे छोटे चीज़ों को ही हम ध्यान में रखकर इन चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। पानी और बिजली दोनों को बचाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले व्यक्ति का दृष्टिकोण, इन दोनों संसाधनों को सहेजने का अर्थ पैसा बचाना। यह सरल है, जब आप पानी बचाते हैं तो आपका पानी का बिल भी नहीं आता है, और यही सिद्धांत बिजली के लिए भी काम करता है। दोनों का संरक्षण पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है, है ना। कहते हैं ना कि एक पंथ और दो काज। तो पानी बचाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा ये प्रयास करना है कि हम घर में पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं तो हमारा नल खुला रहता है, हम उसको हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर कहीं बह रहा है तो तुरंत उसका हम प्रयोग करें। पाइप से जो पानी हम बहुत सारा बहा देते हैं उसको हम थोड़ी सी कोशिश करें कि वो भी ना हो। जहाँ पर पानी तेज धार से बहता रहता है उसको हम क्या करते, हम रोकते नहीं हैं। जब आप अपने दांतों को साफ करते हैं, शेव करते हैं, ब्रश करते हैं, पानी चलाना ना छोड़ें, नल को चालू करके आप एक दिन में लगभग 19 लीटर पानी जो है ना बचा सकते हैं। जब आप बर्तन धोते हैं तो पानी के साथ सिंक के आधे हिस्से को पानी के इस्तेमाल के लिए भर सकते हैं। ऐसे ही बिजली के बारे में है। बिजली हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम कमरा छोड़ते हैं, कमरे से निकल जाते हैं, तो हम उसकी लाइट पंखे हम बंद कर दें, है ना, और वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, इन उनका जो उपयोग है वो कम कर दें। और इसके अलावा जितने भी हम चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं उनके हम बटन ज़्यादातर खुला छोड़ देते हैं, उसको हम बंद करें। गर्मियों में ऐसे समय पर पता लग जाता है कि

तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत मायने ही रखती हैं। ईंधन आपको पता ही है, जैसे तीन प्रकार का होता है, ठोस, तरल, गैस। तो इन जितनी भी हमारा जीवन इन सब चीज़ों पर जुड़ा है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे ईंधन है, इन सबको बचाने में एक इंसान का, एक आम इंसान का बहुत बड़ा महत्व है। तो कोशिश करें, जो हमने आज बात रखी है, आप में से जो भी कोई इस पर अमल करता है या हम खुद भी करते हैं, तो हम अपना भागीदारी निभाएंगे। आइए सुनवाते हैं आपको अब एक गीत, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे को। और ये है पैडमैन फिल्म से अरिजीत सिंह का गायक, बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टोर की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000

0: हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीणदेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की शेष कार्यक्रम शाम 6:20 पर कृषिगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सुभाष से बातचीत, जिसका विषय रहेगा वन विभाग की योजनाएं। शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर आर.एन. यादव से बातचीत, विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण। थारी पसंद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम रात 9:30। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:30 का। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 8:25 पर। और आपकी फरमाइशों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 10:30। एक फिल्म से यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 जिसे दिल्ली केंद्र से ले किया जाएगा। कल प्रातः 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी धान की रुपाई विषय पर। हमारी सेहत, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:15 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता डॉक्टर मोहित कोयल से, इनकी बात का विषय रहेगा गंजेपन की समस्या व समाधान। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 7:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 और कल दोपहर 2:45 पर। युवा संसार, इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल शाम 5:30 का, जिसके आप अंतर्गत आप सुनेंगे करियर काउंसलिंग और उसके अंतर्गत सुनेगा भेंट वार्ता डॉक्टर सुनील कुमार से। विषय रहेगा भारतीय ज्ञान प्रणाली का युवाओं की करियर में महत्व। कृषि जगत, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल शाम 6:20 पर, जिसके अंतर्गत सुनेगा भेंट वार्ता एक किसान से। इसके अलावा शाम 7:00 आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम ग्रामीण संसार, इसमें आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पशुधन के लिए चारा। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे कल सुबह 8:00। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम अनुपावन कार्यक्रम का समय रहेगा कल सुबह 9:00 का। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनेगा कल दोपहर 1:10 पर।

0: संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 बजे। फरमाइशों पर आधारित और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का मन चाहे गीत आप सुनेंगे कल रात 10 बजे। एक फिल्म से यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:15 पर। रात 8:25 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए सुनी गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना। राजकुमारी जो कि कमला नगर रोहतक से लापता हैं और इनका जो हुलिया है इस प्रकार है, रंग सांवला है, गोल चेहरा है, कद 5'2", उम्र 78 साल है। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक को दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सूचना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20,59,00,000 रुपये नकद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह वंजारा का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं बल्कि ऐसी सशक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले, परिश्रम को सम्मान मिले और प्रत्येक युवा को अपने सपनों को साकार करने का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20,59,00,000 रुपए की नकद इनाम राशि से सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे।
3: आज इस समारोह में हमारे जो 198 खिलाड़ियों को आज 20,59,00,000 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है, यह हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आपको इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा की आबादी देश में भले लगभग 2% हो पर भारत के लिए जीते गए पदकों में हमारा योगदान साथियों 1/3 से भी अधिक है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं और खेल संरचना के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
3: हरियाणा सरकार

0: पुरस्कार प्रतिमा 20,000 रूपए और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमा 5,000 रूपए का मानदेय देने का काम कर रही है। साथियों, हर चैंपियन की शुरुआत गांव की माटी से होती है, इसलिए हमने 2,000 खेल नर्सरी हरियाणा के अंदर चलाई हुई 8 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 से लेकर के 2,000 रूपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। और 25 ऐसे आवासीय खेल अकादमियां हैं जिनको 500 रूपए प्रतिदिन डाइट मनी के रूप में दी जा रही।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के 117 खिलाड़ियों को 13,75,00,000 रूपए, पैरा एशियाई प्रतियोगिता 2022 के 3 खिलाड़ियों को 2,32,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर के 78 खिलाड़ियों को 4,52,00,000 रूपए की इनाम राशि दी गई। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह बंजारा केवल 2 नाम नहीं बल्कि सिख इतिहास और भारतीय इतिहास के 2 अमर अध्याय हैं। मुख्यमंत्री आज दोनों महान विभूतियों के संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान विभूतियों का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है।
0: आज हम ऐसे 2 महान पुरुषों की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि धर्म से बड़ा धन से बड़ा धर्म है, जिन्होंने हमें सिखाया है और व्यापार से बड़ी सेवा है, साथी और जीवन से बड़ा सत्य है। बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी और बाबा लखी शाह बंजारा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। उनका जीवन त्याग, सेवा, साहस और अटूट श्रद्धा की जीवंत मिसाल है।
1: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति, पंथ या समाज के नहीं होते बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर होते हैं। उनके विचार, संस्कार और इतिहास केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि नए भारत, नए युग की प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान बंजारा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को 6 मांगों से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा और मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पहेवा में मक्खन शाह लुबाना धर्मशाला के लिए दी गई जमीन से संबंधित कार्रवाई तेजी से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दतौली गांव में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा भी की। इन दोनों निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 31,31,00,000 रूपए की राशि भी दी। उन्होंने बाबा मक्खन शाह लुबाना के नाम पर किसी संस्थान का नाम रखे जाने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उमरी में 5 एकड़ में लगभग 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे।
2: क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी शिकायत मिल रही है कि सपना था क्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक का, जिनसे ऑनलाइन उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ क्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस है, 10 के 10 सिख गुरु आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में क्षेत्र में 3 एकड़ में सिख म्यूजियम की शुरुआत हमें।
1: श्री सुभाष सुधा ने कहा कि 447 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रेलवे लाइन पर 9 जुलाई को ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कुरुक्षेत्र शहर के 5 फाटक खत्म हो जाएंगे जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस रेल ट्रैक के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार ने 206 करोड़ रुपए और रेलवे मंत्रालय ने अन्य निर्माण कार्यों सहित इसके लिए 446 करोड़ 84 लाख रुपए दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा में अधिकांश स्थानों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से 9 जुलाई तक मध्यम से भारी वर्षा होने और फिर 11 से 12 जुलाई तक कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून पूरे हरियाणा में पूरी तरह से सक्रिय होगा। मॉनसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुवाई में लाभ मिलेगा।
3: मॉनसून हरियाणा में 2 जुलाई को प्रवेश कर गया था, उसके बाद मॉनसून की गति थोड़ी धीमी है और अभी दक्षिण हरियाणा में बनी हुई है। पश्चिमी हरियाणा में अगले 3 दिनों के अंदर मॉनसून की सक्रिय बनने की संभावना है। 10-11 जुलाई तक हरियाणा को कवर करने की संभावना, ये बारिश होगी तो धान रोपाई में फायदेमंद।

0: अन्य फसलें में निराई गुड़ाई करें।
1: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकूला में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का विधिवत शुभारंभ किया। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की आईटी सेल द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नवीनतम परिपत्र, समाचार, त्वरित अकादमिक अपडेट्स और विद्यार्थी केंद्रित महत्वपूर्ण जानकारियां कहीं भी और कभी भी सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप तकनीक के माध्यम से शिक्षा को स्मार्ट, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20,59,00,000 रुपए नकद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखीशाह बंजारा का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस चुड़ की कड़ी में शाम के 6:20 और 52 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम सुन रहे सारे बन भैया ने अशोक भाई की राम राम भाइयों। मोहन सुन का ये केस का आगे है और उसमें ये है कि वह धीरे धीरे ये अपनी गति पकड़न लाग रही है। तो अपनी फसलों का और आगे बुआई का जो ये खरीफ की फसलें हैं इनके लिए हमने ध्यान रखना है। खासकर जो बड़ा काम है ये भाई धान रोपाई का चल रहा है तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि भाई जितना हो सके उतना कि वह एक तो अपना जो जहाँ पानी ज़्यादा देर तक रह जाए जिस ज़मीन में वहाँ रखना है अपने लगाने हैं इसको पौधे की रोपाई करें। कई बार ऐसा होगा कि मान लिया भाई ये कह दे बरसात होने लग रही लगातार हो रही है और हम उसको ऊंची जगह लगा लेते हैं ना वो ना लगाया जाए। कारण उसका ये है कि मान लिया एक बार तो दिखाई देगा कि भाई ये मानसून आ रही है और होगा उसके बाद अगर पानी नहीं आओगा आप ऊँचे जगह पर पानी नहीं दे सकते इतना पानी नहीं है तो आपने क्या होगा समस्या उसमें ये हो जाएगी कि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमने उसमें बचना है भाई। और देखो जिस तरह बरसात की बात करें बरसात का आ रहा है ये मौसम इसमें इव हमने ध्यान रखना जो अपने यंत्र है ना कृषि यंत्र उनका पूरा ध्यान रखना है कि भाई कहीं ये ना हो उनका खराबी ना हो जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए उनमें या जिस तरह मान लिया एरो है या कल्टीवेटर हो बाया हमने बा कहने और फिर उसमें ये कर दिया कि भाई रख दिया उसको छोड़ दिया यूँ का ही उसको साफ सफाई उसकी नहीं करी या छाया में नहीं रखा या अंदर नहीं रखा उसको तो फिर उसमें क्या होगा उसका जंग लग जाएगा और जंग लग जाएगा तो उसकी जो उम्र है वह घट जाएगी। तो भाई इसमें ये देखना है अपना सारा जो भी है रोटावेटर है रो है कल्टीवेटर है जितने भी कृषि यंत्र है अपना ट्रैक्टर है उसका उनने अपना जब पूरा काम होने के बाद जिस तरह गार्ड गुड का काम चलेगा खूब

0: तो उसके बाद उसको सफाई करके, जब ये हो गया कि वह पूरा काम हो गया, अपना भाड़ा का काम करना या अपना खुद का काम करना जो भी कर रहे हैं, उनकी अच्छी तरह सफाई करके धो धा करने और फिर अपनी छावा में उसने खड़ा कर लेना। हाँ, जिस तरह ये ट्रेली है, ये ट्राली का इस तरह हो जाए कि वे इसमें खड़ी खड़ी में, क्योंकि देखो ये इतनी बड़े साधन हुए, ज़्यादातर हम इनको अंदर तो रख नहीं सकते, लेकिन छावा नहीं रख सकते, लेकिन इतना ज़रूर है उनकी देखभाल बार भी हैं तो उसमें देखभाल हम कर सका हूँ, किस तरह कर सका हो। देखो ये है जैसे ट्रैली है, ट्रैली आपने उसमें डाले खोल के रख देने, और टायरों के नीचे उसके तो ईंटों के ऊपर, पक्के ईंटों के ऊपर उसके पहिए चारों होने चाहिए, और उसके बाद आगे वाले पहिए हैं जो वो ऊंचे हो जाने चाहिए, कम से कम आध फुट या 4-5 इंच उन्हें ऊपर कर दें। उससे क्या होगा, जो भी बरसात आओगी या पानी आओगे उसके अंदर, पानी उसके अंदर नहीं रुकेगा और नीचे निकल जाए, बह जाएगा। एक इसका ये रखें ट्राली का भी, अच्छी तरह उसको सफाई कर दें, झाड़ू से साफ कर दें, उसमें कोई किसी प्रकार का रेता या दो कोई दूसरा अड़ंगा उसमें ना हो। कारण उसका ये है, जो मान लिया रेत मिट्टी होगी, अड़ंगा होगा तो वो पानी ने रोक लेगा, और लंबे समय तक पानी रहेगा तो उसका जंग लग जाएगा। बेशक आपने नई लियो, चाहे उसका पेंट करवाया, कुछ भी कराया हो, तो उसमें आपने दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वह जितना उसके अपने कृषि यंत्र दूसरे हैं, जैसे कल्टीवेटर का है, रो है, उनको भी आपने ये करना है, जो ही काम हो गया उनको धो के ने खूब अच्छी तरह साफ करके ने, और उसके बाद फिर आपने वहीं ईंटों के ऊपर रख देना, नीचे गारे में नहीं, उसमें अगर रखोगे गारे में तो उसका जंग लग जाएगा। और आप ये देखो इतने महंगे महंगे ये कृषि यंत्र हैं, अगर उनको हमें इस तरह ही रखते रहे तो उनकी उम्र है वो घट जाएगी, और धीरे धीरे जो उन काम देना चाहिए वो काम नहीं दे पाऊंगे, और फिर हमने दूसरा खरीदना पड़ेगा और फिर वही अपना खर्च हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। और ये भी माल्या भैया ने जिनने शुरू नहीं कराई, चलाओगे उनने, उनमें अपना तेल पानी का, वैसे तो आपने 15-20 दिन पहले, महीने पहले करनी नहीं चाहिए ये चीज़ें, उनमें तेल पानी का अच्छी तरह करके कि सही एकदम दुरुस्त बना लें, कि सही तरीके से वो चलेंगे, रो है कल्टीवेटर सारे के सारे अपने उसमें काम ठीक करेंगे। अगर मान लिया पहले अगर रखे हुए यूँ के यूँ तो उसमें जंग लग रहा होगा, ग्रीस वगैरह सारी चीज़ें उसकी करवा के, सर्विस करवा के ना जब चलाएंगे तो सारा काम अपना सही करेगा, और फिर उसके बाद काम करने के बाद उसको धो धाकर साफ करके सुखा कर और अपना अंदर रखने इसमें ईटो। हाँ, एक चीज़ का और है, उनके ऊपर ये मोटे पॉलीथीन है वो रख दें, ढक दें उनको अच्छी तरह, रख ढक कर और फिर रस्सी वगैरह से बांध दें, क्योंकि बरसात खुले में है ये, और बरसात आओगी, बूंदे आओगे तो उसके ऊपर पानी गिरने से जंग लगेगा, और जंग लगने से देखो भाई आपने पता है कि जो अपने कृषि यंत्र हैं चाहे कितने भी मजबूत हैं, लेकिन वो जंग उनको खाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में जैसे देखो, अब तो कई अपने किसान भाई जिस तरह मान लिया जब ट्रैक्टर नहीं थे, जो कसी कसोला जो भी कृषि यंत्र हो दे, छोटे हार दे, उनने भी अच्छा साफ सूफ करके ने और अंदर रख दिया दे, उसका यही वजह होया करती कि भाई इनका जंग लग गया था, फिर हमने दोबारा फिर इनको लगवाना पड़ेगा, और अगर 2-3 बार इस तरह जंग लगता रहा तो वो कसी ख़त्म हो जाए या कसोला ख़त्म हो जाए, दराती ख़त्म हो जाएगी हो जाए। तो और एक चीज़ ये भी है, जो गेहूँ बुआई की मशीन है, यानी ये बोने वाली मशीन है, इस मशीन का तो और भी वो देखा है भाई, वो यूँ ही खड़े कर देते हैं बाहर, और उसके ऊपर वो खुली है, उसमें बीज भी पड़ा हुआ, कुछ खाद की भी पड़े हुआ है, और मिट्टी भी आ जाती है और पानी उसमें होकर ना, वो सीधा जंग लग कर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, 1-2 सीजन वो काम आती है। देखिए ये साधन अपना है, हमने इसको चलाना, ठीक तरीके से चलाना, तो इसलिए इसमें पूरा वो ध्यान रखें कि वह साफ सफाई करके ने, और ऊपर पॉलीथीन तो मोटे पॉलीथीन आओ आजकल, और उससे बांध के अंदर अच्छी तरह ये कर दें कि उसके कोई किसी प्रकार की बरसात का पानी ना लागे, वो ठीक रहे, जंग ना लागे, और उसकी उम्र लंबी बनी रहे। तो भाई ये अपने कृषि यंत्र का आपने ध्यान रखना है, और ये वे ध्यान आपने ये भी रखना है कि जो इस तरह एक हम बताऊँ कि वह अपने को हमने जो किसान भाइयों को कई प्रकार की योजनाएं मिली हैं सरकार द्वारा, चाहे उसमें सरकार है या यूनिवर्सिटी है या वन विभाग है या जितनी भी जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुँचाई जाए, तो आपने एक पूर्व प्रसारित बातचीत सुनवाएंगे वन विभाग की विभिन्न योजनाएं। राजेश वत्स, तो सुनिए।
1: भैया, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा वन विभाग की विभिन्न योजनाएं, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया।

0: डॉक्टर राजेश बस जी को, आप वन मंडल अधिकारी हैं और भिवानी में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: सबसे पहले तो अब क्योंकि मौसम भी आ गया है इस तरह का, और मौसम के साथ साथ में पूरे वर्ष भर आपकी कोई न कोई गतिविधि है वो चलती रहती है, तो फिलहाल हम बात करेंगे कि वन विभाग की ऐसी कौन कौन सी फ़ायदेमंद योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए और सामाजिक दृष्टि से लाभदायक हैं।
1: डॉक्टर साहब, वन विभाग की यानी कि सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं हैं
0: जी।
1: उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो कृषि वानिकी में क्लोन के सफ़ेदे जो लगते हैं, जहाँ सेम की समस्या है या पानी ज़्यादा है, भूमिगत जल स्तर ऊंचा है
0: जी,
1: वहाँ पर ये क्लोन के सफ़ेदे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से
0: उपलब्ध करवाते हैं,
1: लगवाते हैं
0: जी,
1: और इसके अतिरिक्त एक साल तक इनकी देखभाल भी करते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा ये कि ये क्लोन क्या क्या चीज़ होती है, किस तरह का होता है
1: ये? डॉक्टर साहब, जो सफ़ेदा तेज़ी से बढ़ने वाला है
0: जी
1: और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तैयार होता है, ये
0: यानी कि बीज के बिना उसकी टहनी से या उसकी जड़ से किसी तरह से,
1: हाँ जी
0: उस तरह से ये बनाए जाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी,
1: और ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, लगभग 4 से 5 साल का समय लेते हैं, उसके बाद इनकी कटाई करके
0: जी
1: और इनसे आमदनी
0: ले सकते हैं,
1: ले सकता है किसान भाई कोई भी।
0: जी।
1: और इसके अतिरिक्त इनको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है,
0: अच्छा,
1: एक बार कटाई के उपरांत इसमें फुटाव होता है
0: जी,
1: तो उसमें से अगर 2-3 मजबूत टहनियाँ हम रख लें, लीडिंग शूट,
0: जी,
1: तो वो बेहतर होता है और वो दोबारा फिर 4 से 5 साल में तैयार हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: कटाई के लायक हो जाते हैं।
0: ये फायदा है कि हमारा दोबारा लगाने का खर्चा है,
1: हाँ जी,
0: वो उसमें बच जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, इसमें एक थोड़ा सा ये रहता है कि जो सफ़ेदा है ये कुछ पानी की मांग ज़्यादा रहती है इसमें।
1: हाँ, ये बात सही है कि पानी ज़्यादा चाहिए,
0: जी,
1: लेकिन जहाँ पानी पहले से ही ज़्यादा है, वाटर टेबल ऊंची है, पानी का जल स्तर ऊपर है, चवे का पानी ऊपर
0: जी,
1: है,
0: जी
1: उसको नीचे लेके जाना भी जरूरी है,
0: जी जी
1: क्योंकि अगर पानी ऊपर रहेगा तो हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी नहीं होंगी,
0: जी
1: तो जल स्तर को नीचे ले जाने के लिए ये जरूरी है कि मतलब इस तरह के जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित हैं
0: जी
1: तरीके वो अपनाए जाएं,
0: जी
1: उनमें पौधारोपण से अगर जल स्तर नीचे जाता है तो ये सबसे बढ़िया हमारे पास एक ऑप्शन है
0: जी
1: कि
0: डॉक्टर
1: ये
0: साहब, एक
1: लगाया जाए।
0: थोड़ा सा एक जब इस तरह का पौधारोपण करते हैं या जो भाई सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है भाई 4-5 साल हम उसने लगा के रखेंगे तो उसके बाद हमने कितना के फायदा मिल सके है, एक मोटा सा कोई अनुमान आप
1: ये
0: दे
1: डॉक्टर साहब
0: सकें?
1: ऐसा है, ये निर्भर करता है कि जब कटाई का समय होता है तो उस वर्ष मार्केट रेट क्या है।
0: अच्छा, बाजार भाव के
1: हाँ,
0: ऊपर।
1: बाजार भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं,
0: जी
1: लेकिन एक बात तय है
0: जी
1: कि जितना खेती से मुनाफा होता है
0: जी
1: उससे ज़्यादा ही मुनाफा होता है इसको बेचने से,
0: अच्छा
1: और इसके साथ साथ बीच में खेती की फसलें भी ली जा सकती हैं,
0: जी, जब ये छोटी अवस्था में
1: जब
0: हो तो।
1: हाँ जब ये छोटे 3 साल तक आराम से इसमें मतलब कृषि वानिकी के तौर पर बीच बीच में चारे की फसलें भी ली जा सकती हैं,
0: जी
1: सरसों की फसल भी ली जा सकती है,
0: जी
1: कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा, तो यानी कि वो अलग से एक फायदे वाली चीज़ हो जाए है,
1: हाँ
0: अगर आप
1: हाँ
0: बीच में अगर
1: ये
0: दूसरी कोई।
1: अतिरिक्त आय का साधन है।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा एक तो ये हो गया आपका किसान भाइयों के लिए, दूसरा
1: डॉक्टर साहब यूँ है कि एक स्कीम है प्राणवायु देवता स्कीम, प्राणवायु देवता स्कीम,
0: देवता जी,
1: इसमें जो 75 साल से पुराने पेड़ हैं,
0: कोई भी हो चाहे
1: कोई
0: वो
1: भी हो
0: जी,
1: और वो कहीं भी खड़े हों,
0: अच्छा
1: वो किसान के खेत में हैं, पंचायत की ज़मीन में हैं या कहीं और हैं,
0: जी
1: अगर वो 75 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो सरकार की तरफ से उनको ₹3,000 प्रत्येक वर्ष
0: जी
1: पेंशन दी जाती है।
0: अच्छा
1: उनको एक आवेदन वन मंडल कार्यालय में देना होगा
0: जी

0: हर जिला स्तर पर वन मंडल कार्यालय हैं
1: जी,
0: तो वहाँ अपना वो आवेदन दें और कुछ कागज़ हम उनसे मांगते हैं
1: जी
0: और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो पेंशन उनकी शुरू हो जाती है।
1: वो उनके नाम से हो जाएगी।
0: हाँ
1: और वो एक तरह से ये होगा भाई, उस वृक्ष की वो देखभाल,
0: हाँ
1: करें
0: उसके रख रखाव के लिए वो पैसा
1: जी,
0: काम
1: इस्तेमाल
0: आता
1: कर
0: है,
1: सकते हैं
0: काम आता है,
1: जी
0: इस्तेमाल आता है।
1: जी
0: तो ये
1: कहीं
0: पिछले 2 साल से ये स्कीम शुरू की गई है, बहुत अच्छी स्कीम है।
1: जी, तो वो ये पैसे हैं भाई, उसकी खाद का है, पानी का है, या कहीं उसकी
0: हाँ
1: टहनी
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: सूखी
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी वो करने का
0: मान लिया उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी नहीं है तो
1: जी
0: जैसे मिट्टी डलवा दी,
1: जी जी
0: तो ये इस तरह से रख रखाव में काफ़ी
1: फायदेमंद रहेगा
0: फायदेमंद रहता है।
1: जी। बहुत बढ़िया स्कीम है डॉक्टर साहब ये। अच्छा, इसके अलावा दूसरी आपकी तीसरी
0: तीसरी एक वन मित्र स्कीम है, ये
1: वन
0: भी
1: मित्र जी
0: वन मित्र स्कीम डॉक्टर साहब ऐसा है, इसमें कोई भी व्यक्ति वो अपनी प्राइवेट ज़मीन में
1: जी
0: या पंचायत की ज़मीन में खुद पौधे लगवा सकता है,
1: अच्छा
0: उसको पौधे निशुल्क वन विभाग उपलब्ध करवाएगा,
1: जी,
0: गड्ढे उसको खुद स्वयं उसको खोदने
1: खोदने
0: होंगे और
1: जी
0: उसमें पौधे लगाने होंगे
1: जी
0: और उसके हम उनको पैसे देते हैं, उनकी
1: जी
0: जेब से कोई खर्चा नहीं होता है। इसमें गड्ढे खोदने पर 20 रुपये पर गड्ढे के हिसाब से हम उनको अदायगी करते हैं,
1: जी चाहे वो
0: और
1: कितने के गड्ढे खोद दो।
0: हाँ,
1: अच्छा, कोई उसमें लिमिट नहीं है।
0: और दूसरा ये है कि जब पौधारोपण कर दिया जाता है उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए दस रुपये पर महीने
1: रख रखाव के
0: रख
1: लिए।
0: रखाव के लिए
1: अच्छा
0: 10 रुपये पर महीने हम उनको अदायगी करते हैं।
1: जी
0: ये बड़ी अच्छी स्कीम है
1: जी
0: और इसमें ऐप बना हुआ है, तो पोर्टल पर जाके उसमें वो अपनी आईडी से उसमें डाल सकते हैं उनके
1: जी
0: फोटो वगैरह।
1: अब तो ज़्यादातर किसान भाई इस बात से जानकारी है कि भाई पोर्टल है, क्योंकि खेती बाड़ी में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं इस तरह की, तो वहाँ जाके अपना आवेदन कर लें।
0: आवेदन कर लें, अगर कोई दिक्कत है हमारा स्टाफ है मदद करने के लिए,
1: जी,
0: हर ब्लॉक लेवल पर भी है, रेंज लेवल पर भी है, तो हमारा स्टाफ है वो मदद करता है।
1: जी
0: अगर
1: डॉक्टर
0: किसी भी स्तर पे कोई दिक्कत आती है
1: जी
0: तो वो हमारे स्टाफ से संपर्क करें, हमारा स्टाफ पूरी मदद करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा जानकारी चाहूँगा किस तरह के पौधे होते हैं, कुछ फलदार भी होते हैं या सिर्फ जो छाया वाले लकड़ी देने वाले पौधे होते हैं।
0: देखिए फलदार होते हैं,
1: जी
0: छायादार तो होते ही हैं और
1: जी
0: लकड़ी वाले भी होते हैं, लेकिन फलदार में हमारे पास कलमी पौधे नहीं होते, वो
1: अच्छा
0: बागवानी विभाग अलग है सरकार
1: जी जी
0: की तरफ से,
1: जी
0: वहाँ उनके पास होते हैं। लेकिन जैसे आम है,
1: जी
0: जामुन है, जमुआ है,
1: जी जी
0: देसी आंवला है, देसी पपीता है, देसी अनार है,
1: जी
0: ये सब हमारे पास हमारी नर्सरियों में उपलब्ध हैं,
1: जी
0: तो वहाँ से वो पौधे उनको आवश्यकता अनुसार मिल जाते हैं।
1: कई बार डॉक्टर साहब ये होता है कि किसान भाइयों के पास में थोड़ी सी जगह है, या भाई अपने आंगन में वो लगाना चाहें, तो एक फलदार हो तो उनको थोड़ा सा ये रहता भी 2-4 साल में, 15 साल में कुछ वो कुछ फल है, वो बच्चों को मिल जाएगा, परिवार को मिल जाएगा, तो इस लालच में, इस लोभ में उसकी सेवा अच्छी तरह से करते हैं
0: डॉक्टर साहब ये इसमें जैसे जामुन है,
1: जी
0: बेल पत्र है,
1: जी
0: धार्मिक महत्व भी है बेल पत्र
1: बिल्कुल
0: का,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और आम है,
1: जी
0: तो ये पौधे देसी आंवला है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन जब आंवले लगने शुरू होते हैं खूब लगते हैं,
1: जी तो औषधीय फल हो गया एक
0: हाँ
1: तरह से
0: हाँ
1: जी
0: तो ये आराम से लगाए जा सकते हैं, कोई
1: जी
0: दिक्कत नहीं है इनमें, ये
1: जी
0: हमारी नर्सरियों में उपलब्ध हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं कुछ इस तरह का हो कि भाई स्कूल के बच्चे अपनी क्लास के हैं
0: हाँ
1: वो लगाना
0: बिल्कुल
1: चाहें,
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल,
1: गांव गली मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे होके जाएं तो
0: स्कूल के बच्चों का मैं बताऊं आपको,
1: जी।
0: सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम है पौधगिरी,
1: पौधगिरी
0: पौधगिरी
1: जी
0: इसमें 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम निशुल्क पौधे उपलब्ध करवाते हैं प्रत्येक वर्ष,
1: अच्छा जी
0: और वो पौधे अपने घर ले जाके भी लगा सकते हैं, वो अपने विद्यालय में भी लगा सकते हैं।
1: जी
0: और अब की बार तो हमने ये शुरू किया है कि जो लड़कियों के स्कूल हैं
1: जी
0: उसमें हमारे पास ऐसे फीडबैक आया था कि लड़कियां अनिमिक हैं,
1: जी
0: खून की कमी है,
1: जी
0: तो हमने स्पेशली सुहांजना के पौधे तैयार
1: करवाए
0: करवाए हैं
1: जी जी
0: और वो उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं
1: जी
0: सुहांजना के पौधे, क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी

0: भी होता है, इनके पत्तों में भी, फ्लावर्स में भी,
1: फलों
0: फूलों में
1: फलियों
0: भी
1: में भी
0: और इसकी फलियों में भी,
1: जी
0: तो इनकी इसका महत्व ज़्यादा है।
1: जी
0: वो स्कूल में भी लगा सकते हैं, अपने घरों में भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा जगह नहीं घेरता है।
1: जी बहुत बहुत अच्छी योजना है ये जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब
0: इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक जल शक्ति अभियान के तहत हम अलग अलग सरकारी विभागों को और पंचायतों को
1: जी
0: निशुल्क पौधे उपलब्ध करवाते हैं
1: जी
0: प्रत्येक वर्ष।
1: ठीक है
0: तो कोई भी सरकारी विभाग या कोई भी पंचायत
1: जी
0: जितने पौधे लगवाना चाहें वो मतलब हमारे से निशुल्क ले सकते हैं, उपलब्ध हैं हमारे पास नर्सरियों में ये पौधे।
1: जी
0: और इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वो अपनी पहचान यानी आईडी दिखा के और हमारी किसी भी नर्सरी से पौधे वो ले सकता है
1: अच्छा डॉक्टर साहब,
0: निशुल्क।
1: ये नर्सरी आपकी सभी जिला स्तर पर है या कहीं ब्लॉक में या
0: नर्सरियां हमारी हर जगह ब्लॉक स्तर पर हैं,
1: ब्लॉक स्तर पर है?
0: ब्लॉक स्तर पे,
1: अच्छा
0: तो वो कहीं से भी पौधे मतलब उनको
1: ले सकते
0: लेने
1: हैं
0: में कोई दिक्कत नहीं होगी, पौधे उपलब्ध हैं।
1: जी
0: और अब क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है
1: जी
0: और ये सबसे उपयुक्त समय है पेड़ पौधों के लिए,
1: लगाने का
0: हाँ,
1: जी
0: तो क्योंकि इसमें वो ज़्यादा चलते हैं और अच्छे अच्छे पनपते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये है कि लोग बाग लगा तो लेते हैं लेकिन बाद में उसकी देखभाल ना होने के कारण वो या तो घास फूस ज़्यादा उग जाता है या कोई डांगर पशु है वो सड़ गया है या, तो उसके लिए भी
0: इसमें इसमें तीन चार बातें हैं विशेष
1: जी
0: तौर पर
1: जी जी
0: मैं आपके माध्यम से आम आदमी के लिए बोलना चाहूँगा कि
1: जी
0: जो मेहनत का काम है वो पौधा लगाने के बाद शुरू होता है।
1: जी
0: एक तो उसकी पशुओं की चराई से सुरक्षा,
1: अच्छा
0: उसमें या तो अगर ट्री गार्ड, जहाँ ट्री गार्ड नहीं है कोई कांटेदार बाड़ कहीं भी लगा दें,
1: जी
0: जैसे झाड़ फूस वगैरह घर के आसपास होते हैं तो एक बार उससे बचाएं,
1: जी
0: उसको मतलब पौधों की चराई से बचाएं। दूसरा कि बरसात के मौसम के बाद जैसे ही पौधों को पानी की ज़रूरत होती है तो आवश्यकता अनुसार उनमें पानी डालें।
1: जी ये
0: और
1: जरूरी है
0: हाँ,
1: जी
0: और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्रत्येक जिला स्तर पर वन मंडल अधिकारी कार्यालय हैं, किसी भी परामर्श के लिए
1: जी
0: या कोई भी दिक्कत है उसके समाधान के लिए वन मंडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जी
0: कहीं मतलब मान लिया कोई दीमक की समस्या है या कोई और बीमारी आई हुई है
1: जी
0: तो उसका समाधान हम अवश्य करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें कई बार ये है कि जिस तरह हम पौधे हमने लगा लिए हैं, पेड़ बन गए हैं अच्छी, तो उसके बाद में बिक्री उनकी करनी हो है तो उसमें थोड़ा सा भाई अपना कोई अड़ोसी पड़ोसी का या गांव का कोई हो गया तो उसने वो बेच दे हैं, तो जो बेचने की प्रक्रिया है ये क्या रहती है विभाग की तरफ से आपकी, इसकी क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं?
0: डॉक्टर साहब देखिए कि जो सरकारी तौर पर जो बिक्री का सिस्टम है उसमें हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
1: जी
0: जो हरियाणा वन विकास निगम है,
1: जी
0: वो कटाई का काम करते हैं।
1: जी
0: और उनको रिक्वेस्ट भेजने के बाद, उनको आवेदन करने के बाद, वो जो सरकारी दरें जो नियत की गई हैं
1: जी
0: उन पर वो खरीद लेते हैं।
1: अच्छा
0: अगर अगर बाजार भाव उनसे ज़्यादा है
1: जी
0: तो वो ओपन मार्केट में सेल कर सकते
1: बाजार
0: हैं,
1: में बेच सके हैं
0: बाजार में बेच सकते हैं।
1: जी
0: पूरा पूरी वो कोशिश करके, तहकीकात करके, छानबीन करके, उसके बाद ही अपने वो मतलब पेड़ पौधों को जब भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, कोई
1: मतलब वो
0: दिक्कत नहीं।
1: उनकी मर्जी है, अगर
0: हाँ
1: आपको ये लगता है कि विभाग के भाव हमने अच्छे मिल रहे हैं तो विभाग को बेच सके हैं, और उनको ये लगे कि भाई हमने तो बाहर इसके बढ़िया रेट मिल रहे हैं तो वो उसमें ही बेच सके
0: बिल्कुल
1: हैं जी।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, कई बार आपके वन विभाग की तरफ से कुछ पाबंदी होती है कि पेड़ खड़े हैं उनको नहीं काटना है, उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई उससे पहले विभाग से कोई आपत्ति नहीं है इसका प्रमाण लेना पड़ता है, इस तरह की कुछ?
0: इसमें डॉक्टर साहब जैसे कुछ जिले हैं
1: जी
0: जहाँ पर पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट
1: जी
0: जो है वो लागू है, उसके सेक्शन 4 और 5,
1: अच्छा
0: तो वहाँ प्रतिबंधित हैं
1: जी
0: जहाँ पर सामान्य सेक्शन 4 है वहाँ बिना अनुमति के वो अपने खेत में से भी कटाई

0: कर सकते।
1: अच्छा
0: तो वो अगर जहाँ अपने खेत में उन्होंने कटाई करनी है
1: जी,
0: तो वो वन मंडल अधिकारी को आवेदन करें
1: आवेदन करें जी।
0: कि इस तरह से हमें ज़रूरत है और ये मतलब यहाँ इसको कटवाया जाना ज़रूरी है, तो हम उनको परमिशन दे देते हैं। मौका देख के
1: जी,
0: हम जैसी भी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक परमिशन उनको हम देते हैं,
1: अनुमति मिल जाती है उनको
0: अनुमति मिल जाती है।
1: जी।
0: लेकिन ये जो कृषि वानिकी में जो प्रजातियां लगाई जाती हैं,
1: जी
0: जैसे मैंने क्लोन के सफ़ेदे का जिक्र किया,
1: जी
0: पॉपुलर है,
1: जी
0: बकैन है और देसी किकर है,
1: जी
0: इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अलंथस है,
1: जी
0: इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है इन पर। ये
1: अच्छा
0: वो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें काट सकते हैं और बेच सकते हैं।
1: जी
0: पूरे हरियाणा में कोई प्रतिबंध नहीं है किसी तरह का इन पे।
1: अच्छा
0: जो दूसरी प्रजातियां हैं
1: जी
0: उन पर प्रतिबंध है।
1: ठीक। तो कोई और विशेष आपको जानकारी देना चाहें, भाइयों को कोई सलाह देना चाहें
0: बस आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा
1: जी?
0: सबसे
1: जी
0: कि वर्षा ऋतु तो आरंभ हो चुकी है और पौधे निशुल्क उपलब्ध हैं वन विभाग की नर्सरियों में,
1: जी
0: तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं
1: जी
0: और उनकी देखभाल भी करें, उनको
1: देखभाल
0: बड़ा
1: करें
0: करें,
1: जी
0: उनको बड़ा करें।
1: जी मतलब जो आपने लगाए सिर्फ वो एक प्रक्रिया ना रह जाए कि भाई चलो इस साल हमने लगा दिए है और दिखाने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए या कहने के लिए भी हमने एक पौधा लगा दिया है
0: हाँ, जैसे हम
1: सिर्फ।
0: बच्चों की देखभाल करते हैं ऐसे
1: हाँ
0: छोटे पौधों की भी देखभाल करें,
1: बिल्कुल
0: वो अवश्य बड़े होंगे और बहुत अच्छे तरीके से बड़े पेड़ मतलब बनेंगे वो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे पीछे भाइयों ने देखा है कि पर्यावरण प्रदूषण कितना रहा है और जो ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में भाइयों ने देख लिया था कि कितनी ज़रूरत तो इसकी बढ़ गई थी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भी पर्यावरण हमारा साफ हो, स्वच्छ हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहे, इसके लिए पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और आपने अपने विभाग की इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए डॉक्टर राजेश वत्स जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: तो आयो, ये तो आपने बातचीत सुनी वन विभाग की विभिन्न योजनाएं। तो इसमें बात ये भाइयों की, देखो मैं पौधे लगाते हैं, हर वर्ष लगाते हैं, जिस तरह अब हरियाणा में ये रख दिया कि वह 70 लाख पौधों की योजना बना दी। पौधे तो हर साल लगते हैं, लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं और ज़मीन पर लगाते हुए, लेकिन वो पौधे हैं कहाँ? सिर्फ एक फोटो उतरवाना या यूं कहना कि मैंने पौधा लगा दिया, उससे कोई बात नहीं बनती। हर साल इतने पौधे लगाए जाते हैं तो फिर वही बात आती है कि वो जाते कहाँ? वो फोटो जो उतरवा कर जो अखबार में देते हैं, फोटो एक दिखाते हैं, वो कहाँ है फिर वो फोटो? तो हमने चीज़ें ये देखनी भाइयों कि भाई चाहे कुछ भी हो, जो पौधा अगर हमने लगा लिया तो उस पौधे को अगर मान लिया वो छायादार है तो उसको छायादार, जब तक वो छाया नहीं देने लग जाता तब तक उसकी देखभाल करनी है। और अगर फलदार पौधा है तो जब तक वो फल नहीं देना शुरू कर देता तब तक हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी ये नहीं है कि भाई हमने पौधे लगा दिए या उनकी गिनती कर दी और उनको बहुत बड़ा चढ़ा के बात कह दी या उसके फोटो उतरवा लिया, वो नहीं है। वो तो सिर्फ एक दिखावा है और असली हकीकत है या ज़मीन पर काम करना तो ये है कि हम उस पौधे को बड़ा करें, उसकी देखभाल करें, आवारा पशुओं से बचाएं, पानी की ज़रूरत तो जब उसको पानी दें, और जब उसके आसपास मान लिया मिट्टी की ज़रूरत है, कटाव रहे तो वो मिट्टी डालें, और अगर खरपतवार है तो वो उसमें से निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें देखने, कई बार उनमें दीमक वगैरह ये भी हो जाती है, तो वो सब कुछ हमने देख कर तब चलना, तब तो जाके बात बन सके। वरना कितने साल हो चुके हैं, हर साल इतने पौधे लगते हैं, अगर उनकी देखभाल करके देते, उनको बड़ा किया जाता तो अब तक तो बहुत ज़्यादा हो जाते, हर जगह वृक्ष ही वृक्ष हो जाते। तो इन चीज़ों से भाइयों हमें युवाओं को खासकर इसमें करेंगे, युवाओं को जुड़ना पड़ेगा और अपना एक फ़ोटो ना उतरवा के, अखबार में ना कटवा के, उसका आपने उसको पौधे को दिखाना है। आपने ये देखा होगा पहले अपने गांव में आरदा, खेत में आरदा, भाई उसका नाम आरदा, उस खेत का नाम कि फलाना उसका पौधे का नाम, या उस दादा फलाना वाला नाम लेकर कर आरदा उसका, वो खेत उसका क्या था, वहाँ पौधा था, वहाँ भैया तो फलदार था या छायादार था, उसमें वो इनको जरूर मिल गया। ज़्यादातर हमें फलदार पौधे लगावा खेत में, देखिए अब आजकल ऐसा हो रहा है कि जो नए युवा पीढ़ी या नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो खेत में नहीं जाते, उन्हें अपने खेतों का पता नहीं है, तो तभी पता

0: रहेगा, उसमें वहाँ पर आप फलदार पौधे लगा दोगे या वो करो तो उस बच्चे को, या देखो जैसे अभी आगे तीज आओगी उसमें ढूंढने के लिए अब वो पौधे नहीं है, मतलब बड़े बड़े पौधे हो आर दे, कितने बड़े बड़े बड़े पीपल हो आकर दे और उनके ऊपर है, मतलब एक दो दिन पहले जाकर अपना डाला वो कर दे उसके ऊपर रस्सी बांध कर दे कि मेरा नाम कर, फिर उसके पींग गाल के झूलिया कर दे, देखो कितनी वो थी। लेकिन अब तो क्या हुआ, वृक्ष ही नहीं रहे, वो रुख नहीं रहे बड़े बड़े, तो वो कहाँ गए, क्योंकि वो बड़े हो गए और वो गिर गए, उनकी देखभाल नहीं करी, नए पौधे लगाए नहीं, सिर्फ हमें फोटो में अखबार में रह गए उसमें। तो ये ना हो कि नहीं अपना ध्यान रखना हमने कि बच्चे कुछ भी हो जाए अपना वो करेंगे, पौधों को बड़ा करेंगे और उसके बाद उसको छायादार छाया और फलदार तो फल इसके लेंगे। और भाई बात ही मनोरंजन की है तो रागनी सुनवा दे अपना गायक कलाकार रहेंगे बलबीर शास्त्री और उनके साथी।
1: ओ!

0: आपको नैनो यूरिया।
1: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
2: भाई अनुरागनी सुनी, गायक कलाकार थे बलबीर शास्त्री और उनके साथी, और विज्ञापन भी सुन लिया, और भाई घड़ी का ना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, और ई आप सुनिए कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भाई देखो, अभी देखो बरसात तो हो रही है, बरसात में क्या होगा, शुरुआत हो रही है बरसात की, तो जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, क्योंकि खाने के बगैर

0: कुछ देर रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बगैर कुछ देर नहीं रहा जाएगा। अब चारों तरफ हम देखो पानी तो इतना है, सारा सारा पानी इतना कि वो किसी भी तरह उसको इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। पानी की एक चीज़ बता रहे हैं कि बच्चे कुछ भी हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे किसा भी पानी हो, वो आग बुझाने के तो काम आता है, लेकिन हमें चारों तरफ ये इतना गंदा पानी देखते हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि आग बुझाने के भी काम नहीं आएगा। तो ये सारा का सारा क्या है कि हमारे द्वारा किया हुआ है, पानी की बचत नहीं करते, उसकी वेस्टेज करने लग रहा है, ऊँ लग रहे हैं। तो इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज़रूरी है। और एक समय ऐसा होगा कि वह धरती पर पानी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ जाएगी। अब आप ये देखो खेती में तो ज़रूरत पड़ रही है, कितनी कमी हो रही है। अब नहरें हैं, ये किसान भाई यह हो कि वह महीने में तीन तीन दिन सरप नहीं रहा हो, तो उसका कारण ये पानी नहीं रहा कहीं पर। तो जो है उसको बचाना हमने बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम अपने आगे वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सके, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते। तो भाई ये आपने एक बातचीत सुनवा दिया पर्यावरण संरक्षण के दुष्प्रभाव। तो इसमें देखो कि के नुकसान हो उसके अगर पर्यावरण का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो इसलिए इसका पर्यावरण का संरक्षण भी करना जरूरी है। पेड़ पौधे लगाने जरूरी है, कोई भी चीज़ है वेस्टेज हमने नहीं होने देनी है, चाहे वो पानी है, चाहे अनाज है, चाहे जो भी चीज़ें, यानी उसको नहीं होने देना। तभी जाकर ना हमें अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे और अपने जो काम है वो सारे सारे बढ़िया तरीके से कर पाऊँ। तो सुने ये बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या रहते हैं, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सचिन कुमार जी को। आप रसायन विभाग बेसिक साइंस कॉलेज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पधारे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे कि पर्यावरण किसको कहते हैं।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि आज हम बात करेंगे पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है
1: जी।
2: तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण क्या है
1: जी।
2: पर्यावरण शब्द बना है परि प्लस वेश। परि मतलब चारों ओर, चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण है। पर्यावरण हमें सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए हरा भरा परिवेश देता है, ये सब ही पर्यावरण है
1: जी।
2: और ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है भी है
1: जी। स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके सबके लिए ये आवश्यक है। और इसलिए भी ज़्यादा आवश्यक है कि अगर ये साफ स्वस्थ स्वच्छ हो तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। लेकिन जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से घटक होते हैं जिससे कि हम इसको प्रदूषित बोलते हैं।
2: बिल्कुल सर, जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो यह अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो इसके लिए मैं अब आपको बताना चाहूँगी, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, और सबसे बड़ा आजकल जो चल रहा है हमारा जलवायु परिवर्तन, ये सारे घटक मिलके पर्यावरण पर दूषित प्रभाव डालते हैं
1: जी। तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ध्वनि प्रदूषण का भी आपने जिक्र किया है, धूप धुआं है, धूल है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन अब इस तरह का क्या हो गया कि ये इनकी जो तादाद है, मात्रा है, वो बढ़ गई है।
2: बिल्कुल सर, आजकल इन सब चीज़ों की तादाद बढ़ गई है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण क्या है कि एक गंभीर समस्या है और उसको हम कम नहीं कर सकते, आने वाले समय में वो बढ़ती ही जाएगी। अब वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अलावा धूल मिट्टी के कण हैं, और रसायन जब मिल जाते हैं वातावरण में तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है
1: जी।
2: सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारी सांस संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और एक आम समस्या और है सांस फूलने जैसी बीमारी आजकल आम हो गई है
1: जी।
2: उसके बाद एक वायु प्रदूषण के कारण ही हृदय से रिलेटेड हमारी बीमारियां हैं, जैसे कि बीपी, हाई बीपी है, वो भी आपका वायु प्रदूषण से ही

0: प्रभावित है। उसके बाद मैं कहूंगी कि कैंसर का खतरा, जो लंग्स कैंसर है वो भी वायु प्रदूषण के कारण बढ़ गया है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है कि अब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बनके बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे हमारे फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण में क्या होता है लंग्स डिजीज और अल्टरनेट लंग डिजीज बन जाता है लंग्स कैंसर में। और इसका अगर मैं आपको बताऊं, वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों और बूढ़ों पे।
1: जी,
0: बच्चों की अगर हम बात करेंगे कि बच्चे हैं, उनके लंग्स डेवलप हो रहे हैं, अगर वो प्रदूषित हवा में लंग्स डेवलप करेंगे तो अफेक्टेड होंगे। और रही जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग आपको पहले से ही उनको कुछ बीमारी है तो वो अधिक उससे प्रभावित होंगे आपके वायु प्रदूषण से।
1: जी,
0: तो ये मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही थी कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण भी एक घटक है, क्योंकि वातावरण हमें क्या देता है, पीने के लिए साफ पानी दे रहा है और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। भी हमारे जो स्रोत हैं पीने के, नदी हैं, कुएं हैं, अब उसमें अगर हम हानिकारक रसायन, कचरा, प्लास्टिक या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट जब हम उसमें ऐड ऑन करते हैं
1: उद्योगों की का जो
0: तो वो पानी
1: है,
0: ना तो पीने योग्य रहता,
1: जी, जी.
0: ना क्या है उपयोग करने के लिए रहता, तो उससे भी हमें बहुत सारी बीमारियों का देखना पड़ सकता है। जैसे कि अब अगर पानी गंदा है, पानी अगर गंदा है तो उससे क्या होगा, आपके डायरिया होगा, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ठीक है, ये सब बीमारियां पानी से ही होती हैं। अच्छा, इवन स्किन एलर्जी है वो भी हमारी किससे होगी, पानी से ही होगी। अगर पानी दूषित है, अगर वो दूषित पानी हमने अपने खेत में लगा दिया तो वो हमारी फसल में भी जाएगा, फसल को जब हम खाएंगे तो अल्टरनेटली हमारे वो भोजन में भी आ रहा है, तो उसकी वजह से फिर वही हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्या है अफेक्टेड होंगे, जैसे कि आपकी किडनी है, हार्ट फेलोर है, ब्रेन का है, तो ये सब हमारे क्या है जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं।
1: जी, जल का, जल के साथ ही जैसे आपने कृषि का भी जिक्र किया है, तो कृषि में भी ये देखा गया है कि बहुत सारे रसायन है वो प्रयोग किए जाने लगे हैं। अब तो हर एक चीज़ के लिए कोई छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है तो रसायन का इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल, अब हम किसान क्या करता है, अपनी खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ करते हैं।
1: जी,
0: उनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, एक तो उर्वरता बढ़ाने के लिए, दूसरा जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको किल करने के लिए। अब भाई उनकी उर्वरता तो भाई कम हो रही है, इल्ड बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ फूड है, वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है,
1: जिसकी वजह से जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो घट रही है उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और जो हम फल है या उपज जो ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता
0: उसकी
1: वजह से कम हो रही है,
0: उसकी गुणवत्ता, पैदावार बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता कम होती जा रही है। तो जो क्वांटिटी तो हमने बढ़ा ली फूड की, लेकिन उसकी क्वालिटी हम क्या है डे बाय डे डिग्रेड करते जा रहे हैं, जब हम इन पेस्टिसाइड्स का या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं भाई, जैसे यूरिया है, DAP है, MOP है, अगर हम उनका हम यूज़ कर रहे हैं तो। और सबसे ज़्यादा समस्या पेस्टिसाइड्स यूज की है उनकी रेजिडुअल प्रॉब्लम,
1: यानी कि उनके अंश हैं
0: कम से कम
1: रह जाते हैं।
0: आजकल क्या है, पहले हम जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन में DDT, BHCM यूज करते थे, वो बिल्कुल बैन हो चुके हैं, क्योंकि उनकी रेजिडुअल प्रॉब्लम क्या थी, 20 साल से भी ज्यादा थी, उनको रिप्लेस किसने किया,
1: 20 साल तक
0: वो
1: पड़े रह सकते हैं।
0: और उसके अलावा उनके जो मेटाबोलाइट हैं वो उससे भी ज्यादा हानिकारक हैं।
1: और ये देखने में आया है कि वो दीवार पर जैसे DDT का छिड़काव करते थे तो उसका जो स्पर्श होता था तो वो माताओं के दूध में भी पाया गया था उसका।
0: हाँ जी,
1: तो
0: बिल्कुल इवन वो मदर फीड में भी उसके थे, क्योंकि जो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स होते हैं आज जैसे हम यूज करते हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, उसके जो रेजिडुअल टाइम है उनका बहुत ज्यादा है, अप टू 10 to 20 years है,
1: तो
0: इसलिए आज के टाइम में क्या है और बेनिफिशियल पेस्टिसाइड्स आ गए, उनको रिप्लेस कर दिया, जैसे सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स हैं या फिर नियोनिकोटिनाइड्स हैं या फिर बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आजकल हम मोस्टली नीम बेस्ड पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं,
1: नीम आधारित है, जो दवाई
0: हाँ, नीम केक है, ताकि जो रेजिड्यूल, हालांकि उनका भी रेजिड्यू रहता है, लेकिन उनका रेजिड्यू अप टू सेफ लिमिट है, अप टू 1 month, अप टू 2 to 3 months, उससे ज्यादा उनकी क्या है रेजिड्यूल प्रॉब्लम नहीं।

0: जी
1: और रेजिड्यू की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे ना पैडी है, कॉटन है,
0: जी
1: उसमें पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा कंजप्शन है।
0: बहुत ज्यादा
1: हाँ
0: इस्तेमाल
1: जी,
0: होता है
1: तो
0: उसका।
1: उसकी वजह से देखो आपकी पेस्टिसाइड की वजह से आपका पानी भी प्रदूषित हो रहा है, साथ
0: जी
1: के साथ जो भूमि प्रदूषण जैसे हम सोयल पोल्यूशन हम कह रहे हैं वो भी अफेक्टेड हो रहा है। अब
0: जी
1: सोयल पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सोयल पोल्यूशन में आपकी फसल लगी, वही फसल लगी आपने खाई, एक फूड चेन आपकी आ गई। अच्छा, जल है आपका प्रदूषित हुआ है तो जल में आपके और भी मित्र जीव हैं,
0: जी
1: उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है तो वो क्या होंगे भी, मरेंगे ही, तो उससे आपकी क्या हो रही है, फूड चेन भी अफेक्टेड हो रही है।
0: जी मतलब भोजन की एक श्रृंखला है हमारी, वो
1: हाँ,
0: प्रभावित हो
1: वो
0: रही है।
1: प्रभावित हो रही है, आपके आपका जल दूषित हो रहा है या फिर
0: जी
1: आपकी भूमि दूषित हो रही है,
0: जी
1: भी जिसको हम कह सकते हैं भी वाटर पोल्यूशन है या फिर सोयल पोल्यूशन है,
0: जी
1: और इन दोनों का हमारे उस पे अफेक्ट हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। अगर मैं सोयल पोल्यूशन में बात करती हूँ तो सोयल पोल्यूशन में आज के टाइम में हैवी मेटल्स में आपके आते हैं लेड है, कैडमियम है, मरकरी, उसका हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है।
0: जी
1: अब लेड और कैडमियम है उसकी सिमिलर केमिस्ट्री होती है आपकी जिंक के साथ,
0: जी
1: जिंक के आपके एंजाइम्स हैं, बायो एक्टिव एंजाइम है, जैसे कार्बोक्सी पेप्टिटेज है, कार्बोडिंक अनहाइड्राइज है, जो कि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को करता है। अब इनकी
0: यानी कि हमारी
1: केमिस्ट्री,
0: जो पाचन प्रणाली है उसको
1: हाँ,
0: प्रभावित
1: आपके
0: करता है।
1: जो बिल्कुल
0: आपने तत्व बताए
1: मेटाबॉलिज्म को
0: इसमें
1: फास्ट
0: कैडमियम,
1: करता है।
0: कैडमियम और जस्ता।
1: हाँ जी,
0: जी और पारा।
1: हाँ, पारा, तो
0: जी
1: इनकी क्या होती है कि केमिस्ट्री सेम है लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री को डिफरेंट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम के हिसाब से।
0: जी
1: फिर आप आगे अगर हम बात करते हैं कि
0: ध्वनि
1: भी
0: प्रदूषण की बात
1: ध्वनि
0: करें।
1: प्रदूषण की, तो ध्वनि है आसपास की जो ध्वनि है
0: जी
1: जब वो उसका लेवल बढ़ जाता है, भाई
0: जी
1: आपका चाहे ट्रैफिक की है या आपकी आसपास के डीजे की है, तो हमें वो क्या करती है, सुहाती नहीं,
0: जी
1: तो वो भी एक क्या तरह है, एक तरह का नॉइस पोल्यूशन है। अब नॉइस पोल्यूशन से क्या होगा भी, हम स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे
0: तनाव
1: तो
0: बढ़ जाएगा उसका।
1: नींद नहीं आएगी, नींद
0: जी
1: नहीं आएगी तो ये क्या करेगा, आजकल एक डिजीज कॉमन हो रखा है इंसोमानिया में,
0: जी
1: नींद कम आना,
0: नींद कम आना या
1: तो
0: नींद ना
1: नींद
0: आने की
1: नींद
0: समस्या,
1: नहीं आएगी तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा।
0: पाचन शक्ति है उस पर
1: और
0: प्रभाव
1: सबसे
0: पड़ेगा।
1: जरूरी चीज क्या है कि अब हमारे बच्चे हैं,
0: जी
1: पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है
0: पढ़
1: किसी
0: नहीं पाते
1: नॉइस
0: हैं वो,
1: पोल्यूशन
0: कई
1: से।
0: बार ये देखा है कि एग्जाम
1: हाँ,
0: है
1: एग्जाम है तो
0: तो परीक्षा
1: उनकी
0: है
1: उनकी जो सीखने की क्षमता है वो क्या है, कम हो रही
0: प्रभावित
1: है,
0: हो रही है।
1: भाई मेंटल उनका जो ग्रोथ है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है
0: जी
1: नॉइस पोल्यूशन से।
0: जी और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ इसी कड़ी में अगर हम एक और कहें तो मोबाइल की लत है
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: भी बच्चों को बहुत ज़्यादा
1: मोबाइल
0: प्रभावित
1: की
0: करे।
1: लत भी, मोबाइल की लत आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल रही है, उनकी मेंटली ग्रोथ पे भी और फिजिकल ग्रोथ पे भी।
0: जी
1: अब कोई टीचर ने उनको असाइनमेंट दे दिया, आजकल बच्चों ने गूगल पे डाला,
0: जी
1: वो सोल्व आउट कर लिया, तो उनका जो दिमाग वाली एक्सरसाइज उनकी हो ही नहीं रही।
0: वो हो नहीं पाता है।
1: अच्छा, पहले बच्चे खेलते थे आउटडोर गेम, अब
0: जी
1: आजकल खेल रहे हैं इनडोर गेम, तो उनकी क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होगी तो उनकी
0: शारीरिक
1: फिजिकल ग्रोथ
0: श्रम होता
1: कहाँ से
0: नहीं है।
1: होगी।
0: जी जी
1: अगर हम मोबाइल का अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो मोबाइल भी एक तरह का एक पोल्यूशन है
0: जी
1: भाई, ये क्या है, एक ऑनलाइन पोल्यूशन हम नाम दे सकते हैं इसको।
0: जी जी
1: अब मोबाइल की आवश्यकता भी है और इसकी डिसएडवांटेज ज़्यादा है।
0: वो उपयोग के ऊपर निर्भर
1: एक, हाँ,
0: करेगा।
1: एक मोबाइल एक छोटी सी चीज़ है, इसने एक
0: जी
1: बहुत बड़ी क्रांति ला रखी है अपने समाज में
0: जी
1: भाई, हर कोई क्या है आजकल मोबाइल को ज़्यादा समय दे रहे हैं, चाहे वो बच्चा है, युवा है, बुजुर्ग है।
0: बल्कि अगर हम देखें तो पहले अपने गांव में शाम के समय एक बैठक होती थी, आसपास अपन बैठते थे, वो चाहे हुक्का पीने की बहाने से ही हो, लेकिन एक जगह बैठते थे, अपनी समस्या है वो बात करते थे, दूसरे के अनुभव शेयर होते थे, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या होती, कोई घरेलू समस्या होती, ये तो ये जो सारा समय था, ये जो एक एक बहुत अच्छा सिस्टम था, ये समाप्त हो गया है।
1: बिल्कुल सर, एक छोटी सी चीज़ ने इतनी क्रांति ले आया है कि
0: जी
1: भी 10 साल में ही इतना बड़ा बदलाव आ गया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं,
0: जी
1: अगर मैं बात करूं 70+ वाले एज के, वो कहते
0: जी
1: हैं कि भी ऐसा समय नहीं देखा कि भी इतना बदल गया है समय
0: जी
1: बहुत ज़्यादा।
0: जी
1: भाई अब हम अपने बचपन में आउटडोर गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, उन बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे अगर आज के बच्चों को हम कहते हो, कहते हैं कि ये तो हम बोर होने वाले गेम है।
0: बल्कि हमने एक बार देखा था कि कम से कम 70 ऐसे खेल होते थे जो हम अपने बचपन में खेलते थे, अलग अलग इलाकों में अगर देखा जाए तो वो सारे तो खेल बच्चों के छूट गए हैं
1: हाँ जी सर,
0: उसमें से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: इसमें कोई खेल बच्चों का रहा नहीं, सारा समय था वो मोबाइल के ऊपर जाता
1: तो
0: है।
1: ये भी मोबाइल भी एक वातावरण को ना पोल्यूट ही
0: जी
1: कर रहा है हमारे
0: मतलब अगर
1: वातावरण
0: हम
1: को।
0: इसको यूं कहें कि इसका उपयोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, आपका जो जरूरी चीज़ है आप वो देखिए, वो उसमें करिए,
1: जरूरी
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: इसकी लत ना पड़े, इसका
1: हाँ
0: इसका ध्यान रखा जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसका हम सदुपयोग सही उस पर करें तो बहुत बढ़िया चीज़ है
0: जी
1: भाई। हमारे जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए भी अगर अब एक बना रखा है हमने, ऐप है, यूट्यूब है, तो
0: जी
1: बच्चे उस पर अपना वीडियो डालें, वीडियो सुनें,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी ऐप है। किसी को मेल भेजना है या कोई और संदेश हमें भेजना है तो मोबाइल एक इजी टेक्निक है अपना
0: जी
1: संदेश पहुंचाने के लिए।
0: जी इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप?
1: इसके अलावा जी, अब हम आज हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है
0: जी
1: और जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2025 का, उसका थीम भी क्या है कि नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो
0: प्लास्टिक
1: अब
0: का
1: हम
0: उपयोग
1: लास्ट में हम
0: नहीं।
1: यही कहेंगे कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएं,
0: जी
1: तो उसके लिए हमें वृक्षारोपण करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे।
0: पेड़
1: वृक्ष
0: पौधे
1: क्या
0: लगाएं,
1: करते हैं
0: जी
1: भाई, CO2 है उसको अवशोषित करते हैं और
0: कार्बन
1: ऑक्सीजन
0: डाइऑक्साइड,
1: को छोड़ते हैं।
0: जी
1: पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जल बचाना चाहिए। जल
0: जी
1: कैसे बचाएं कि भी हम जो टपकते नल हैं उनको ठीक कराएं, कम से कम जल का उपयोग करें। आजकल जल का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है भाई,
0: जी
1: जैसे गाड़ी धोने में ही कर दिया, दीवार धोने में ही कर रहे हैं, तो जल का भी क्या करें, हम संरक्षित करें जल
0: डॉक्टर
1: को
0: साहब,
1: संरक्षित।
0: इसी कड़ी में एक बात और कहना चाहेंगे कि बहुत सारे इलाके जो पानी वाले इलाके माने जाते थे, अगर हम बात करें करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत की, जहाँ पर पानी पानी अच्छा होता था, वहाँ भी कुछ इलाके हैं वो डार्क जोन में चले गए, यानी उनका जो पानी
1: अंडरग्राउंड
0: स्तर
1: वाटर
0: है,
1: है,
0: हाँ
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: नीचे चला गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: नीचे
0: इसमें
1: चला
0: भी
1: गया।
0: हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा ज़मीनी पानी है उसका भी दोहन ना किया
1: हाँ
0: जाए,
1: जी, इसके लिए सर हमें ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का करना पड़ेगा
0: उपयोग
1: कि भी
0: करना
1: उसका
0: पड़ेगा, यानी
1: अवेयरनेस
0: कि जो
1: प्रोग्राम हम
0: बारिश का
1: चलाएं।
0: पानी है
1: हाँ
0: उसको संग्रह
1: जी
0: करने की कोशिश की
1: हाँ,
0: जाए।
1: रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम करें
0: जी
1: ताकि जो वो पानी है वो हम बचा सकें और जब हमें ज़रूरत हो जब हम उसको उपयोग कर
0: इसके
1: सकें।
0: अलावा जो हमारा फसल चक्र है उसमें भी हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। गेहूं और धान का ये जो फसल चक्र है, इनमें सबसे ज़्यादा पानी है वो इस्तेमाल होता है।
1: हाँ, धान में सबसे ज़्यादा पानी
0: जी
1: इस्तेमाल होता है सर। जैसे हम छोटे पढ़ते थे
0: जी
1: तो हम ये मानते थे भी धान कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ बारिश होती है,
0: जी
1: नेचुरल पानी होता है, जैसे चेरापूंजी में।
0: जी जी
1: लेकिन अब क्या है, अगर हम हरियाणा की हम बात करते हैं तो नहरें आ गई, पानी की सुविधा होगी, तो सब लोग धान लगाने लग गए हैं।
0: जी
1: तो धान लगाने से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा नीचे
0: नीचे
1: चला
0: चला
1: गया।
0: गया है। जी
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: ये आगे एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है।
1: हाँ हाँ
0: इसमें
1: बिल्कुल
0: भाई अपना कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह की किस्में लें जो कि कम पानी पर हो जाती हैं,
1: हाँ, ऐसी
0: और
1: वैरायटी ले सकते
0: जिस
1: हैं
0: तरह
1: जिसमें पानी,
0: सीधी बिजाई की जाने वाली फसलें हैं वो
1: हाँ
0: हम
1: जी
0: ले सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सर, कि हम अपना क्या सक भी जल अपना संरक्षण कर सकें जल का।
0: जी
1: और पर्यावरण को बचाने के लिए सर भाई ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, जैसे कि हम बिजली बचाएं।
0: जी
1: लाइट हम कहाँ से बनाते, पानी से ही बनती है,
0: जी
1: तो भाई पंखे, लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कम से कम उपयोग करें। अगर एक्स्ट्रा में आपके जल रहे हैं तो उसको हम बंद करें टाइम टू टाइम। और इसका अल्टरनेट है हमारा सोलर एनर्जी,
0: जी
1: उससे हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइट यूज़ कर सकते हैं। कि आजकल तो सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट भी क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है।
0: जी
1: और प्रदूषण कम करें,
0: जी
1: आजकल क्या हो रहा है कि कहीं जाना है, थोड़ी सी दूर जाना है कि हम अपना स्कूटर निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे, तो इससे बढ़िया कि शायद तो साइकिल से जाएं, और सबसे बढ़िया हम पैदल चल कर जाएं,
0: बिल्कुल।
1: और
0: और इसके
1: कहीं
0: इसके साथ ही जो पेट्रोल डीजल है
1: बिल्कुल
0: उसके वो भी सीमित मात्रा में
1: हाँ
0: है।
1: भाई, खास करके है हमें सार्वजनिक जगह पे जाना है तो हम
0: जी
1: सार्वजनिक हैं भाई, रोडवेज बसेज हैं या ट्रेन हैं, हम उनका यूज़ कर सकते
0: इस्तेमाल
1: हैं
0: कर सकते
1: भाई
0: हैं।
1: कहीं जाने के लिए।
0: जी
1: और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, इसमें हमें ना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए,
0: जागरूक होना चाहिए
1: खासकर
0: हमें।
1: बच्चों के लिए भाई,
0: जी
1: स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे भाई, हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं
0: जी
1: भाई। जैसे हम देते हैं ना नारे, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ,
0: जी
1: धरती को स्वच्छ बनाना है,
0: जी
1: हरियाली को बढ़ाना है।
0: जी
1: हाँ जी सर,
0: जी तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताई है कि जी आप कुछ और करना चाहेंगी?
1: हाँ जी सर, मैं अपने अब वक्ता वाणी को विराम एक कविता को
0: जी
1: कहकर देना चाहूंगी।
0: जी
1: हरियाली की गोद में जीवन मुस्काता, पर्यावरण को हर दिन खतरा सताता, पेड़ों को काटा, नदियां भी रोई, पेड़ों को काटा, नदियां भी रोई, धरती माँ चुपचाप सब कुछ खोई। धरती माँ चुपचाप सब कुछ खोई। अब समय है जागने का, अब समय है जागने का, धरती को फिर से संवारने का। आओ मिलकर संकल्प उठाएं, हर कोना फिर से हरा भरा बनाएं, हरा भरा बनाएं। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ।
0: जी
1: धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और ये हम सब की जिम्मेवारी है पर्यावरण को बचाने के लिए।
1: बिल्कुल सर, पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, तो इसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है।
0: जी, तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर सचिन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: तो भाई ये तो आपने बातचीत सुनी और लग गया था आपका आपका मनोरंजन भी करवा दें। रागनी सुनो, गायक कलाकार होंगे बाबू रामदेव और उनके साथी।

भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे बाबू राम दैया और उनके साथ थे। और भैया जिस तरह बता रहे थे कि वह एक तो अपना पानी का बचाव करना जितना ज़्यादा हो सके, जिस तरह ये बरसात का पानी है इसका बचाव करना है, और ये पानी से आप ये देखो कितनी बीमारियां हो जाएं, और पानी की कमी के कारण देखो कितनी अब फसलों का हो गया है, सारा सारा देखो किसानों के लिए अब कितनी समस्या हो रही है। हर किसान ये कह रहा है कि भाई महीने में 3 दिन नहीं रहा है। बात उसका ये है कि पानी कहीं रह आएंगे, तो इसलिए अपने पानी को संरक्षित करना जरूरी है, तभी जाके ना हम अपना भविष्य संवार सका। चाहे इसमें पानी का उसमें देखो कई बार ये देखा कि उसका वेस्टेज होने लग रही है, उसको रोकना है। जिस तरह इसने डॉक्टर

सचिन कुमारी ने बताया था कि वह ठूठिया वैसे चल रही है, हमको ठूठियों को रोकना, टपकने से भी रोकना। आप इस तरफ हम ध्यान नहीं देते क्योंकि इसकी अधिकता अब तक हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में हकीकत में जाके देखा है तो उसमें ये है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें अपने ये ध्यान रखना, उसका संरक्षण करना ही करना। और भाई वो ई घड़ी कहना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई ने जज दो, सारे बाण भाइयों ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूड की घड़ी में शाम के ठीक 7:30 और 15 सेकेंड हुए हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, बोले आनंद बख्शी के संगीत उत्तम सिंह का।

1942 लव स्टोरी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, माफ़ कीजिएगा, इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

आइए सुनते हैं जुर्म फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने। बोल है इंद्रवर की और संगीत है राजेश रोशन का।

0: जिसने कार्यक्रम के अंत में नमक हलाल फिल्म का एक गीत इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, बोले हैं अनजान की और संगीत पप्पी लहरी का।
1: अरे अरे अरे ना ना ना।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ही संपन्न होता है। रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और इसमें हम आपको सुना रहे हैं सुरेंद्र शर्मा की गाई गजल। तो सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गजल।

और सी गज़ल के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम ही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने सुंदर शर्मा की गाई कुछ चुनिंदा गज़लें। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण

0: साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार

0: कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism.

0: और से गीत के साथ एक फिल्मसी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने सोल्जर फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 9:30 और 12 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम थारी पसंद।
1: थारी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई उड़ रागनीतें और पसंद भेजनी है आप।

0: सब। आप हैं इस राणा जिला पानीपत ते सतबीर सिंह जागलान, दीपक, संदीप, सोनू, अंगूरी, चांद कौर, रमेश, चरण सिंह, मास्टर राम मेरे और धीरेन जागलान। पांडू पिंडारा जिला जींद ते आप हैं बादल सिंह गिल, कमलेश राणी, टीनू, प्रीति, डॉक्टर वाणिका और डॉक्टर अंकित गिल। यह चिट्ठी आई है गांव उगराखेड़ी पानीपत ते और पसंद भेजनी है अनिल मलिक, सुनीता, पंकज, प्रीति परी और तक्ष मलिक। गांव श्यामड़ी गुआना ते डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, शकुंतला, इंद्र प्रकाश, श्रीकांत और संदीप। जाटू लुवारी ते रामफुल, हरिराम, मदन, साधुराम और आवा सिंह। आलेवा ते हमारे श्रोता हैं नरेश लोहान, जोगिंदर लोहान और राजकुमार लोहान। तो सब सुने भाई अपनी पसंद पे बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।
1: तेरे अपनी अकली पास में कोन्या, तू कित का छतरी।

यह तो भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे बाली शर्मा और उनके साथी, और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे जगबीर सिंह बड़म्बिया और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजनी है आप सब। आप हैं गांव लुदेसर ते पपुराम घाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी और रुचिका देवी बड़मुजी सागर मध्य प्रदेश ते हमारे श्रोता हैं रघुनाथ सुषमा बबीता ममता विनोद विशाल और ओम प्रकाश। गांव झिंझर ते मासे सतबीर शर्मा कौशल्या बाला और उनका पूरा परिवार। खेड़ी चोपटा ते पंडित सत्तारेड़ी राजा राम पुनिया राम मेर शर्मा और किताब सिंह सौरान। तो सब सुने भाई अपनी पसंद पर जगबीर सिंह बड़म्बिया और उनके साथियों की गाई ओड़ यारागनी।

भाइयों ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे पाले राम दैया और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजनी है आप सब। आप हैं खरकड़ी सारते बागाराम पवन कुमार पंकज रमेश शमशेर दिनेश सुभाष और अमरजीत खेड़ी दौलतपुर ते प्रीत सिंह बिंटू और संजय कुमार गांव चिड़िया दूध वाजो चरखी दादरी में है सोनू मंजी तनिष संगोलिया और उनका पूरा परिवार। लोको कॉलोनी लोहारू ते बिल्लू सिंह चंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र बरखा योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार। तो सुना भाई सब अपनी पसंद पे पालेराम दैया और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

ஞாரி தெரியலா ஞாரி உட்டி மேரே பதன் கே மாரி.

या तो भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे पाले राम दैया और उनके साथी, और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे सुनील दुजानिया और उनके साथियों की गाई ओड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गांव देवरेड़ते श्री राम चहल, बीर सिंह चहल, मास्टर ओम बलवान धर्म सिंह, दया किशन कालाराम और मास्टर रणधीर। गाँव लाठते चिट्ठी आई है और पसंद भेजनी है केशव नमन अनवी अवी कपूर सिंह कौशिक राजवीर फौजी नाना फौजी रामफुल और खेतुराम। गांव अजायब ते सुबेदार मामन सिंह सावित्री देवी ऋषभ देव ऋषि देव।

0: भजन रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे सुनील दुजानी और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनांगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और उनके साथियों की गायोड़ और पसंद भेजनी है आप सब। छपरौली उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोकर, राम कुमार, अनिल, सुनील कुमार, प्रवीण, सुमित, विनीत और उनका पूरा परिवार। ये हमारे श्रोता है गादी जनपद पाक बत उत्तर प्रदेश से काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिड कुमल। महेंद्रगढ़ से चिट्ठी आई है और पसंद भेजनी है ममता गांधी, विकास गांधी, वंश, दिया, नोनू सगुन और विक्की गांधी। इंदौन शहर जिला करौली राजस्थान से खुशीराम, मोनू, विष्णु, दीपक, राहुल और रिंकू। गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय, नीटू और विनोद डबास। पटेल नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। तो सब सुने अपनी पसंद पे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और उनके साथियों की गायोड़ या रागनी।
1: हे भाई गोरे गोरे रंग का गुमान ही क्या बावरे।

भजन रागनी सुनिए, जिसके गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और उनके साथी। और कार्यक्रम की अगली रागनी सुनाएंगे राकेश कलोया और उनके साथियों की गाई ओड़। और पसंद भेजनी है आप सब। आप हैं आशीष सैर थे राजू मिगलानी, बबीता सुभाष, योगी बब्बू और डब्बू। गांव फरासी थे राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार डूडी। गांव बलियाली जिला भिवानी थे दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल। आदर्श नगर मलोट पंजाब थे हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव और उनके परिवार के सभी सदस्य। महमूद पुरोड़ गुहाना थे पंडित प्रभुदयाल, विजेंद्र, दिनेश आजाद, लक्ष्य और रोबिन मुदगिल। तो सब सुना अपनी पसंद पर भाई राकेश कलोया और उनके साथियों की गाई ओड़ या रागनी।

भैया रागनी सुनी, जिसके गायक कलाकार थे राकेश कलोई और उनके साथी, और कार्यक्रम का आखिर में आपने रागनी सुनवा दिया। हाँ, रणबीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथियों की गाई उड़ और पसंद भेजी है आप सबने। आप हैं गांव अरिगढ़ तहसील सभीदों जिला जींद धनपत लांबा कृष्ण रणबीर धर्मबीर कुलदीप बिजेंद्र बबलू और लांबा परिवार। गांव मुड़लाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत रामफल लठवाल दिनेश नरेश सतपाल सुरेश रणधीर जसमेर अजमेर ईशांत यश लक्की और मैंक। गांव भाणा ब्राह्मणांत मेघराज शर्मा गौरव सौरव विजय अजय और जितेंद्र शर्मा। गांव बिरौली जिला जींद सुरेंद्र सांगवान सचिन और अंकित सांगवान। यह चिट्ठी आई है फ्रेंड्स कॉलोनी कैथलते और पसंद भेजने भाई हैं रामफल मान रामधारी मान पाला राम मान इंद्र सिंह अनिल प्रवीण दलजीत मान। तो सब सुने अपनी पसंद पर रणबीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथियों की गाई उड़ या रागनी।

0: भाईजान रागिनी सुनी, गायक कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वाशनी और उनके साथी। और ई बता दे भाईजान, कार्यक्रम का पता अपनी पसंद की रागिनी सुनना चाहो है तो आप भी चिट्ठी डाल सके हैं। कार्यक्रम थारी पसंद, द्वारा केंद्र निर्देशक, आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड 124001। तो मिलेंगे किसी अगला कार्यक्रम में। ईब दलजीत भाई ने इजाजत दे दो, सारे बण भाइयों ने राम राम।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थारी पसंद, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की हिरमी रात के 10:30 और 27 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन का प्यार भरा नमस्कार। तो ये सुनाते हैं आपको आपकी पसंद की कुछ चुनिंदा गीत। पहली फरमाइश है मॉडर्न टाउन करनाल।

सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, नरेंद्र तनेजा की, गोला बाजार से बक्सर से हमारे श्रोतागण हैं, सदानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित मुक्सर से हैं, बापू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, नवनीत निशु पुणे से हैं, पंकज बड़ोदे आयो आदि, जरूर करोड़ से हैं, बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी रजनी, महाराष्ट्र से हैं अभिनीत ग्वानकर, सरिता, प्रिंस, एकांश, मुंबई से हैं सिद्धांत ग्वानकर, प्रमिला, आकार, शैलेश ग्वानकर, वैशाली, श्वेता, सुमित ध्वनि और परी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर किशोर कुमार का गाया गीत, उनका नाम है कलाकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गुलसुर में आइए सुनते हैं दो कलियां फिल्म का ये गीत। इसके लिए पत्र हैं गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, अनक्ष और साहू। चंडीगढ़ से हैं सतीश, अनेजा, बिमला। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश पत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है संबलपुर कांकेर से हैं फरगुर राय यादव, ज्योति, ओजस्वी, इशिका, तेजल। आज़ाद नगर अक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। बठिंडा रोड वाले से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित।

आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत के लिए फरमाइश है महाराष्ट्र शिंगोले से शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम स्वराज, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा शंकर रानी, मौसम संगीता रुद्र रीति, लखनऊ से है मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम पलक पंखुरी। इसी गीत के लिए फरमाइश है राजनगर गांधी चौक से शांति निकेतन से हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली सूर्यवंशी, कोमल मेनका, माधवी साध्वी, गुनगुन। औरंगाबाद से हैं प्रकाश परंगवर, सुषमा प्राजक्ता, प्रांजलि सोहम। दतरंगी से हैं भागवत वर्मा। गौतम नगर नांदेड़ से हैं नांदेड़ प्रभाकर जोंदले आरती। बाबापट्टी बल्लिया से हैं ओम प्रकाश राय। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत, फिल्म का नाम है लोफर।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश का गाया की फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबी, राधिका निष्का तन्मय गजबे, हिंगोली से हैं शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान उत्तम, मलोड़ से हैं रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया आरजू, मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, नंदनेजा, संदीप गोगलानी, जग्गी दुआ, किरण ठाकुर, सुनीता शर्मा, चकला बाजार सामाना से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, पुणे से हैं पंकज बड़ोदे, आर्या प्रियंका। तो ये सुनते हैं आपकी पसंद पर पत्थर की सनम फिल्म का गाया ये गीत, आवाज़ी है लता मंगेशकर और मुकेश की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार का गीत। उनका नाम है अनुरोध और पसंद आप सब श्रोताओं की आदर्श गाँव बल्याली से हैं। दर्शन बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता कमल कुमार बंसल, गर्विश तमन्ना बंसल। मुक्सर से हैं बाबू सिंह दीमान, बलविंदर कौर, अवनीत निशु। लेगा डरवाली से हैं, बेमित्रा से हैं सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। रियल ऑफ कॉलोनी रोहतक से हेमेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह। बागपत से संजय ढींगिया, नमन अबार और सोनू ढींगिया। बठिंडा डवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजु नारंग, मोहित नारंग। लक्षनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपुति साहू और अनक साहू। करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह।

0: आरसी गीत के साथ मनचाहे गीत कार्यक्रम को यही समेटने की आज्ञा दीजिए। सुमन को शुभरात्रि। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया

सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।